जय गुरु भाई बहनों, आप सबको गणिमान स्वागत करो हूँ हमारी आज की परवार्ती सभा में। आप सब हम रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते। मैं हूँ आपने हाथे आपनी गुणंजलि पारेश्वर ने। आज वार सोमवार ने तारीख 18 मई 2026 नो दाड़ो है। भाई बहनों में देखी रहे हो कि अपने स्टूडियो की घड़ी में परवार्ता 6 बजे के हैं। तब आप शुरुआत करो परवार्ती सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो भाई बहनों, आज सभा की शुरुआत करेंगा सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक। इन्हें में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथे भक्ति में गीता ने मनस क्रम में अगाड़ी बढ़ेंगा। किसान भाई बहनों तक की जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मो आपनी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगा जेने कहीं बालकों बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन। आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 7 प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मो आपनी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने अगाड़ी रुख करेंगा तमारी ने अमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने आड़ी आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथी। इस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटले मो ने मारे हाथे रहेंगे हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। अणस क्रम में बढ़ता तक आप रुख करेंगा राजस्थानी गीत तक की जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 8:30 माते। श्रोताओं बिजू कार्यक्रम श्रोता ठीक 9 कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम लेने आवेगा प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल। इन्हें बाद भाई बोनो ठीक 9:30 माते आप हम रोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। भाई बोनो हमारी आप तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इन्हें बाद भाई बोनो शुरू था का अपनी पसंद का कार्यक्रम जिन्हें आप हम रिश्कों का प्रभात 11 तक की बोपरनी 1 भाई बोनो अगर आप भी अपनी फरमाइश गीत ने हम चाहो तो मैंने लेकिन मोकली सको फिल्म नाम गीत ना बोल आपनो नाम ने अपना गाम नो नाम हमारे अणो व्हाट्सएप नंबर माते हमारो नंबर है 9460051234। तो बहन बोनो आ तो हती हमारी आज ने प्रभात की सभा में प्रसारित थवा वाली कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आवो अपने सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना।

0: बेटे सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करे, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
0: आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
6: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
5: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
6: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
5: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बो, आपके कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
2: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवावरा मर हित्ता किसान भाई बोने ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। होवे भाई उन बोनो आप सब हमली रिया हो आपरु सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नो स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक भविष्य ने हाथे।
0: होवे
1: मनीषा बोन आज कार्यक्रम में अपने भाई बोनो की बातचीत विषय है कि अपने मधुमक्खी पालन नो हूँ महत्व है ने अपने जो किसान भाई बोन है ये खेती ने हाथे हाथे आ मधुमक्खी पालन करी ने हरते अपनी आय वधारी सके।
0: होवे
1: आज ना टाइम में अपने देखी रहो कि खेती केवल अनाज उगावा एटले सीमित नहीं बल्कि किसान भाई जी है ये अवे अलग अलग एवी गतिविधियों माते भी ध्यान आली रहे हैं जे एना ने कम लागत में वधारे लाभ आले है।
0: होवे
1: खेती इनते की मजबूत भी बने है ने एना ना जे महत्वपूर्ण कार्य है ये भी असल तरीका थकी थई से।
0: होवे
1: आपने देखो हो अणा में एक सप्त की अच्छू उपाय है मधुमक्खी पालन। हाँ केवल शहद प्राप्त करवानो साधन नहीं भाई बोनो बल्कि आपने खेती पर्यावरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूत करवा बल्ले एक प्रभावी माध्यम थी सके। गाँव में आपने देखो हो के पहला ना टाइम में मनक जे है ये पेड़ों ने पुराना जे घर हता इनमें मधुमक्खी ना छत्ता जे रहता था ये रहू सामान्य बात थी पर अवड़े ना टाइम में आपने देखी रहो कि आ सब चीजें घनी कम थावा लगी गई है ने आज वैज्ञानिक तरीका थे कि मधुमक्खी पालन किसान बल्ले असल आय कमावानु एक साधन है। हाँ एवो कार्य है जे आपड़े किसान भाई बोने ने युवा आसानी तकी अपनावी शके। मधुमक्खी प्रकृति ने अनमोल उपहार है भाई बोनो आ फूल तकी रस इकट्ठो करी ने आपड़ा दे कहो के शहद बनावे हैं इने साथे आपड़ी जे फसले हैं इनमें परागण नु कार्य भी करे हैं। अनी प्रकार तकी आपड़े कही शको के मधुमक्खी पालन आपड़े खेती बल्ले घणो आकानु लाभ पुगाड़े है।
0: होवे अंजलि बोन आपे सही कीधु ते कार्यक्रम ने माध्यम कते आणा विषय माते आपड़े भाई बोनो कते घणा आकानी वाते रहेगा अबर हमड़ा गीत ने मोरे कर अपनी बातें।
1: होवे तो भाई बोलो आप हमर तो रेसू अपनो रेडियो अपनी बातें वाग रेडियो 90.8 FM।

0: भाइन बोनो अनस की थाती हमें कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़ा सूटा। आशा कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आप तक मधुमक्खी पालन में लेने से बातें रही है ये आपने गमी होगा। तो आपने मारो आज कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप राय सुझाव मैंने आली सको अमरे अणपता माते।
1: हवे भाइन बोनो अमरु पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा केम्पस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारू पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बलदे आप मने फोन करी शको अमारे आना फोन नंबर माते। अमारू फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाईन बोनो फेरी वलंगा अनस कार्यक्रम में अनस टन माते एक नाविशनी हाते तारुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में जिज्ञासा को दबाना क्यों नुकसानदायक है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बचपन सवालों का समय होता है, ये वह उम्र होती है श्रोता साथियों जब बच्चा हर चीज को जानना समझना और परखना चाहता है।
0: जी जी,
1: यह क्या है, ऐसा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों है, पक्षी उड़ते कैसे हैं, ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है।
0: बिल्कुल,
1: यही जिज्ञासा बच्चों के मानसिक विकास, रचनात्मकता और समझदारी की नींव रखती है। आज कार्यक्रम में इस विषय पर हम ढेर सारी बातों से श्रोता साथियों को जरूर अवगत करवाएंगे, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में जिज्ञासा को दबाना क्यों नुकसानदायक होता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, अगर बात करें तो जिज्ञासा बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये उसे खोजने, सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करती है अंजलि जी। लेकिन कई बार बड़े लोग बच्चों के सवालों को बेकार समझकर टाल देते हैं, डांट देते हैं या फिर उन्हें चुप करा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: कहते हैं कि इतने सवाल मत पूछा करो, चुप रहा करो, बड़ों के बीच में मत बोलो। साथियों, ऐसे कुछ बातें होती हैं जो हम अक्सर अपने बच्चों से कर देते हैं, और जो ये बातें होती हैं वो बच्चे के मन में एक संदेश देती है कि सवाल पूछना गलत है। अंजलि जी, यहीं से समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जब जिज्ञासा दबती है तो केवल सवाल नहीं रुकते बल्कि सीखने की प्रक्रिया भी कमजोर होने लगती है।
1: जी हाँ,
0: बच्चा धीरे धीरे कम बोलता है, कम पूछता है और कम समझने लगता है। इसलिए बच्चों में जिज्ञासा को दबाना केवल एक आदत को रोकना नहीं है बल्कि उनके विकास की दिशा को रोकने जैसा काम है।
1: बिल्कुल कशिश, यही अब बात आती है कशिश की जिज्ञासा आखिरकार क्या है। तो श्रोता साथियों, जिज्ञासा जानने की इच्छा है, नई चीजें समझने की इच्छा है, कारण जानने की इच्छा, खोजने और सीखने की चाह है। यही जिज्ञासा बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं श्रोता साथियों बल्कि जीवन सीखने योग्य बनाती है। कहना चाहेंगे कि जिज्ञासा बच्चों के विकास में बहुत जरूरी होती है। ये क्यों जरूरी है? तो श्रोता साथियों, सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है। बच्चा जब सवाल पूछता है तभी सीखता है कि अगर सवाल ही नहीं होंगे तो सीख कैसे होगी।
0: बिल्कुल,
1: हर खोज एक सवाल से शुरू होती है। सोच की क्षमता बढ़ती है, यानी कि कशिश जिज्ञासु बच्चा सिर्फ जानकारी नहीं लेता, बस सोचता भी है क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो तो। यहीं से आलोचनात्मक सोच की शुरुआत होती है। जिज्ञासा कल्पना को जन्म देती है, जो बच्चा पूछता है वही नए विचार सोचता है। कहना चाहेंगे कशिश कि इसी के साथ बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब बच्चों के सवाल को महत्व मिलता है तो उसे लगता है कि उसकी बात मायने रखती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें कि जिज्ञासा दबाने से क्या नुकसान होते हैं, तो हम देखते हैं कि इससे बच्चों की सीखने की रुचि कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर श्रोता साथियों, हम बच्चे को बार बार चुप कराते हैं तो वह सवाल पूछना ही बंद कर देता है।
1: जी हाँ,
0: धीरे धीरे उसके अंदर सीखने का उत्साह कम हो जाता है और वो नई नई चीजों को सीखने में कम रुचि लेने लगता है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही बच्चों में डर भी पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है अंजलि जी कि अगर उन्होंने सवाल पूछा तो उन्हें डांट पड़ सकती है।
1: जी जी,
0: या फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि सवाल पूछना ही गलत है। दोस्तों, ये डर आगे चलकर व्यक्तित्व को कमजोर कर सकता है बच्चों के, और साथ ही बच्चों की रचनात्मक शक्ति भी इससे रुक जाती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब बच्चों को सोचने और पूछने नहीं दिया जाता तो उनकी कल्पना सीमित हो जाती है, जिससे वे रचनात्मक चीजों को महत्व नहीं देते।
1: जी हाँ,
0: साथ ही बच्चा महसूस करता है कि उसकी बातें महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे उसका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है।
1: बिल्कुल, यही बात आती है कशिश अब कि घर परिवार कैसे दबा देता है बच्चों की जिज्ञासा को। तो हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जब सवाल करते हैं तो अक्सर घर परिवार के सदस्य ही बोल देते हैं कि इतने सवाल मत पूछो, चुप रहो, बड़ों को ज्यादा मत टोको, ये तुम्हारी समझ की बात नहीं। ऐसी ही बातें अनजाने में जिज्ञासा को रोक देती है। इसी के साथ अगर स्कूल में सिर्फ रटने पर जोर हो और सवाल पर नहीं, तो बच्चे जिज्ञासु कम डरपोक ज्यादा बनते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बात आती है कि इन सारी चीजों के बीच जिज्ञासा को कैसे बढ़ाया जाए। तो जब भी बच्चे सवाल पूछे तो उन्हें सवाल पूछने देना है और उनके सवालों को महत्व देना है।
0: जी हाँ,
1: जवाब जब हमें नहीं पता हो तो हमें उन्हें कहना है कि चलो मिलकर पता करते हैं। हमें बच्चों को डांटना नहीं है, दिशा देनी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हर सवाल मजाक नहीं होता है, प्रयोग करने देना है, यानी कि बच्चों को किसी सवाल के जवाब के लिए खोज करने देना, देखने देना और समझने देना है। प्रकृति जिज्ञासा की सबसे बड़ी किताब होती है, इसलिए हमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ना है। आज का जिज्ञासु बच्चा ही कशिश कल अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, आविष्कारक बन सकता है और जागरूक नागरिक भी बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जिज्ञासु बच्चे सवाल पूछते हैं, सवाल बदलाव लाते हैं और बदलाव समाज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कहना चाहेंगे कि बच्चों का सवाल पूछना और उनकी बातों का जवाब देना हमारा एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए हमें बच्चों की जिज्ञासा को कभी भी दबाना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दोस्तों से बात कर ही रहे हैं तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को कशिश जाने लिया है, अब बात आती है कि बच्चों के सवालों को रोकना नहीं है, उन्हें दिशा देना है। क्योंकि हर बड़ा विचार कभी एक छोटे से सवाल से ही शुरू हुआ था।
1: बिल्कुल,
0: अगर एक कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को इस बात को समझाना चाहें तो श्रोता साथियों बताना चाहूंगी कि एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव कशिश बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था।
1: बिल्कुल,
0: हर बात पर सवाल पूछता था। सुबह सूरज निकलता तो पूछता कि सूरज रोज पूरब से ही क्यों निकलता। बारिश होती तो पूछता कि बादल पानी कैसे बरसाते हैं। खेत में किसान को काम करते देखता तो पूछता कि बीज मिट्टी में दबने से पौधे कैसे बन जाते हैं। उसकी माँ कभी कभी मुस्कुराकर जवाब देती, लेकिन कई बार काम की जल्दी में कह देती, इतने सवाल मत पूछा करो।
1: बिल्कुल,
0: पिता खेत से लौटते तो आरव उनके पीछे पीछे चलता और पूछता, मिट्टी में इतनी खुशबू क्यों आती है। पिता हंसकर टाल देते। स्कूल में भी यही सब हाल था। शिक्षक पढ़ाते तो आरव हाथ उठाकर पूछ देता, अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम ज्यादा पेड़ क्यों नहीं लगाते।
1: बिल्कुल,
0: कई बार साथी जो बच्चे होते वो भी हंसते और कहते, तू बहुत सवाल करता है। धीरे धीरे कशिश आरव को लगने लगा कि शायद सवाल पूछना गलत है। उसने अपने सवाल को मन में ही रखना शुरू कर दिया। अब वह चुप रहने लगा। जो बच्चा हर बात जानना चाहता था वह अब सिर्फ सुनता था, पूछता नहीं था। एक दिन गांव में एक नए विज्ञान शिक्षक आए, शेखर सर। उन्होंने पहली ही कक्षा में कहा, जिसके मन में सवाल है वही सबसे ज्यादा सीख सकता है। यह सुनकर आरव चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात सुन ली हो। अगले दिन शेखर सर बच्चों को पेड़ के नीचे ले गए और बोले, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम सवाल पूछो। बच्चे चुप रहे, लेकिन आरव के मन में कशिश कई सारी तूफाने चल रही थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सर बीज को कैसे पता चलता है कि उसे ऊपर उगना है। शेखर सर मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा सवाल है, यही तो विज्ञान है। उसी दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि उसके सवाल बोझ नहीं ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: अब हर रोज नए सवाल पूछता, कभी खेत के, कभी आकाश के, कभी पानी के, तो कभी पक्षियों के।
1: जी हाँ,
0: शेखर सर हर सवाल का जवाब देते और कभी कभी कहते, इसका जवाब हम मिलकर खोजेंगे। धीरे धीरे दूसरे बच्चे भी सवाल पूछने लगे। कक्षा बदलने लगी। अब पढ़ाई सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रही कशिश। एक दिन शेखर सर बच्चों को गांव के तालाब पर ले गए। वहाँ पानी कम हो गया था। उन्होंने पूछा, बताओ पानी क्यों कम हो रहा है। बच्चे चुप थे। आरव बोला, शायद क्योंकि हम पानी नहीं बचाते। फिर उसने पूछा, अगर बारिश का पानी रोक ले तो क्या तालाब भर सकता है। बच्चों, यह सवाल गांव के बुजुर्गों तक पहुंचा। पंचायत में चर्चा हुई, लोगों ने बारिश का पानी रोकने की योजनाएं बनाई। अगले साल तालाब पहले से ज्यादा भर गया। गांव में लोग कहने लगे, यह सब उस बच्चे के सवाल से शुरू हुआ। आरव अब गांव में सवालों वाला बच्चा कहलाने लगा। कुछ साल बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। आरव ने एक मॉडल बनाया कशिश, गांव में वर्षा जल संरक्षण।
1: बिल्कुल,
0: जज ने पूछा, तुम्हें यह विचार कैसे आया। आरव मुस्कुराया और बोला, एक सवाल से। उसे पहला पुरस्कार मिला। जब वह घर आया तो उसकी माँ ने कहा, हमें लगता था कि तुम बहुत सवाल करते हो, लेकिन अब समझ में आया कि सवाल ही तुम्हारी ताकत है। पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जिस बच्चे को हम चुप कराते थे उसी ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरव ने धीरे से कहा, अगर उसी दिन शेखर सर मुझे सवाल पूछने से न रुकते तो शायद मैं भी चुप ही रहता। समय बीता, आरव बड़ा होकर वैज्ञानिक बना। जब भी बच्चों से मिलता एक बात जरूर कहता, सवाल पूछो, क्योंकि हर खोज, हर बदलाव और हर नई शुरुआत एक सवाल से ही जन्म लेती है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, जिस बच्चे की जिज्ञासा को दबा दिया जाता है उसकी उड़ान रुक सकती है, लेकिन जिसे सवाल पूछने की आज़ादी मिलती है वह सिर्फ खुद नहीं बढ़ता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से ये कह सकते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा को केवल सवाल पूछने की आदत समझना दोस्तों उसकी गहराई को कम करके आंकने जैसा है। वास्तव में जिज्ञासा वह शक्ति है जो बच्चों को देखने के साथ साथ समझने, तर्क करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की क्षमता देती है। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि यही वह गुण है हमारे बच्चों का जो न बच्चों को केवल जानकारी लेने वाला बनाता है बल्कि ज्ञान खोजने वाला भी बनाता है। इसलिए जब जिज्ञासा को दबाया जाता है तो नुकसान केवल साथियों एक व्यवहार का नहीं होता बल्कि बच्चे की सोच, व्यक्तित्व और संभावनाओं का भी होता है।
0: जी हाँ,
1: एक ऐसा बच्चा जिसे बार बार चुप कराया जाता है अंजलि जी, धीरे धीरे वह सिर्फ सवाल पूछना नहीं छोड़ता बल्कि अपनी सोच पर भरोसा करना भी कम कर सकता है।
0: जी,
1: वह केवल निर्देश मानने वाला बन सकता है खोजने वाला नहीं साथियों, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जिज्ञासा अनुशासन की दुश्मन नहीं बल्कि समझ के साथी है। बच्चों के सवालों से परेशान होने के बजाय साथियों, अगर उन्हें संवाद का अवसर बनाया जाए तो वही सवाल सीखने का सबसे सुंदर माध्यम बन सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर बहुत अच्छी बातें रही हैं। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिलेश जी,

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी समाप्त होता है। अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चों के सवालों से बचिए मत, उन्हें अपनाइए साथियों, क्योंकि जिज्ञासा को दबाना विकास को रोकने जैसा है।
1: बिल्कुल।
0: और जिज्ञासा को बढ़ाना भविष्य को मजबूत बनाना है। इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को।
1: नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
2: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम तीनों का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विषय है आपसे बातचीत का कि मनुष्य की क्षमताएं सीमाओं को विस्तार करने लगी है। जैसे कि मनीषा और कशिश, मनुष्य सृष्टि का वो अद्भुत प्राणी है जिसे प्रकृति ने बुद्धि विवेक और सृजनशीलता का अनुपम वरदान दिया है।
2: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि वो सदैव अपनी सीमाओं को पहचानने के बजाय उन्हें तोड़ने और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा है।
2: जी हाँ,
1: समय के साथ मनुष्य की क्षमता इतनी विकसित हो चुकी है कि वो अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार कर रहा है।
2: जी हाँ,
1: आज का मानव केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक क्षेत्रों में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं।
0: जी हाँ,
2: लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथी जानते हैं कि हम उन्हें पहले शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
0: जी हाँ,
2: तो क्यों ना आज भी पहले शुरुआत में गीत सुनवा दे।
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य की क्षमताएं सीमाओं का विस्तार करने लगी हैं। जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास निरंतर विकास, परिवर्तन और विस्तार की कहानी है।
1: बिल्कुल,
0: यह विस्तार केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि विचारों, भावनाओं, संस्कृतियों और संबंधों तक फैला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में मनुष्य की क्षमताएं जैसे समान भावनाएं, समान जरूरतें, समान अधिकारों की मांग और समान जीवन के मूल्य सीमाओं को तोड़ने और एक वैश्विक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जहां पहले श्रोता साथियों सीमाएं देशों, भाषाओं और धर्मों और संस्कृतियों के आधार पर मनुष्य को अलग करती थी, वहीं आज ये क्षमताएं उन्हीं सीमाओं को धीरे धीरे समाप्त कर रही हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो काम पहले असंभव लगता था आज वो कैसे संभव हो गया? चाहे अंतरिक्ष में जाना हो, चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाना हो, या फिर अपने सपनों को हकीकत में बदलने की बात हो साथियों, मनुष्य हम देखते हैं कि लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ रहा है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों इसी यात्रा को हम समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीमाओं से असीम संभावनाओं तक की यात्रा को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक ऐसे प्राणी हैं जो केवल जीते नहीं हैं, बल्कि सोचते भी हैं, सीखते भी हैं और बदलते भी हैं।
2: जी हाँ,
1: और हम देखते हैं कि यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है जागृति जी।
2: बिल्कुल,
1: हाँ, पहले मनुष्य की सीमाएं बहुत छोटी हुआ करती थी, वह केवल प्रकृति पर निर्भर रहता था, डर और अज्ञानता उसके जीवन का हिस्सा हुआ करती थी।
0: जी हाँ,
1: लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि, अनुभव और जिज्ञासा के बल पर इन सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया।
2: बिल्कुल,
1: और आज साथियों हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह उसी विस्तार का परिणाम है।
2: बिल्कुल कशिश, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन बहुत सरल था, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति में ही लगा रहता था।
1: बिल्कुल,
2: उस समय उसकी क्षमताएं सीमित थी और वह प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर नई नई खोजें की। उसने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया और धीरे धीरे सभ्यता का विकास किया। ये सब उसकी क्षमताओं के विस्तार का ही परिणाम था।
1: बिल्कुल,
2: आज हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है मनीषा और कशिश, वो मनुष्य की असीमित क्षमताओं का प्रमाण है।
1: जी जी,
2: एक समय था जब आकाश को छूना केवल एक कल्पना थी, लेकिन आज मनुष्य चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है।
1: बिल्कुल,
2: अंतरिक्ष यात्राएं, उपग्रहों का निर्माण और नई नई तकनीकों का विकास इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं है श्रोताओं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। पहले हम देखते थे जहां शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित थी, वहीं आज शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार बन चुकी है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने ज्ञान को हर घर तक पहुंचा दिया। अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी को प्राप्त कर सकता है। ये भी मनुष्य की क्षमताओं के विस्तार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर मनुष्य के भीतर भावनाओं का एक समान संसार होता है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या संस्कृति से जुड़ा हो।
2: बिल्कुल,
0: खुशी, दुख, प्रेम, भय, आशा और संघर्ष जैसी भावनाएं सभी में समान रूप से पाई जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही भावनाएं मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती हैं साथियों। हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए एक देश का व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति की खुशी और दुख को महसूस नहीं कर सकता। किसी आपदा, युद्ध का संकट के समय पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये सब यह दर्शाता है कि भावनाएं समानताएं सीमाओं को पार कर रही हैं और एक वैश्विक परिवार की भावनाओं को जन्म दे रही हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। वहीं अगर हम देखें ज्ञान और शिक्षा के विस्तार के बारे में, तो दोस्तों पहले ज्ञान सीमित हुआ करता था, लेकिन आज इंटरनेट और शिक्षा ने हर व्यक्ति को अवसर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो, नई स्किल्स सीखने की बात हो, या फिर वैश्विक ज्ञान तक पहुंच साथियों।
0: जी हाँ
1: जागृति जी और मनीषा, अब कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान कर उसे विकसित कर सकता है।
2: बिल्कुल,
1: और जैसा कि आपने भी बताया था जागृति जी कि विज्ञान और तकनीक की भूमिका इसमें अहम रही है, क्योंकि विज्ञान ने मानव की सीमाओं को सबसे ज्यादा बदला है।
0: बिल्कुल,
1: हवाई जहाज ने दूरी खत्म कर दी है, मोबाइल ने संचार आसान बना दिया है, वहीं श्रोता साथियों एआई और रोबोटिक्स ने तो काम करने का तरीका ही बदल दिया है।
2: जी बिल्कुल,
1: हम देख सकते हैं कि अब असंभव शब्द धीरे धीरे गायब हो रहा है और कह सकते हैं कि सब चीजें संभव हो रही हैं।
2: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है मनुष्य की क्षमताओं सीमाओं का विस्तार करने लगी है, ये बातें ऐसे ही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ
0: बिल्कुल,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें बहुत अच्छी चल रही है कार्यक्रम के माध्यम से
1: जी,
0: कि मनुष्य की क्षमताएं जो है वो सीमाओं का विस्तार कैसे कर रही हैं। गीत से पहले कुछ बातें रही थी महत्वपूर्ण हमारी आपसे कि मनुष्य की क्षमताओं का विकास हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि पहले के समय में ज्ञान और शिक्षा का विस्तार अलग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अलग है। साथ ही इसमें विज्ञान और तकनीक की भूमिका को लेकर भी हम बात कर रहे थे जागृति जी। यहीं अगर बात करें सपनों की उड़ान की, तो पहले लोग सीमित सोचते थे, आज युवा जो है वो बड़े सपने देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि स्टार्टअप शुरू करना, नई खोज करना और समाज में बदलाव लाना।
1: जी हाँ,
0: कह सकते हैं कि सपने ही वो ताकत है जो सीमाओं को तोड़ते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ विकास है, तो वहीं कुछ चुनौतियाँ भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर चुनौतियों को लेकर बात करें, तो सबसे पहली बात आती है तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भरता की।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, लोग असल जिंदगी से दूर हो रहे हैं क्योंकि वह तकनीक पर निर्भर हैं। नैतिकता का संकट आ रहा है सामने, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग तकनीक का गलत उपयोग भी कर रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: जिसके कारण नुकसान ही नुकसान है। साथ ही मानसिक दबाव को लेकर बात करें, तो दोस्तों खुद को साबित करने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए जरूरी है कि हम संतुलन बनाकर रखें।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण की समस्या भी यह दिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं किसी एक देश तक सीमित नहीं है साथियों। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब पूरी दुनिया मिलकर काम करे। यह साझा जिम्मेदारी श्रोता साथियों यह साबित करती है कि मानवता की समानताएं हमें एकजुट करती हैं और सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं आज भी सीमाओं का विस्तार देने और एक वैश्विक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। भावनाएं, जरूरतें, अधिकार और सपने, श्रोता साथियों ये सभी चीजें हर इंसान के समान होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: चाहे वह कहीं भी रहता हो, हम देखते हैं कि आज का युग एकता, सहयोग और आपसी समझ का युग है। सीमाएं अब केवल भौगोलिक रेखाएं बनकर नहीं रह गई साथियों, जबकि दिलों और विचारों की दूरी कम होती जा रही है। हमें समझना होगा साथियों कि हमारी विविधता हमारी ताकत है और हमारी समानताएं हमारी एकता का आधार। यदि हम इन दोनों में संतुलन के रूप को अपनाएं, तो हम एक बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि मनुष्य की क्षमताओं का विस्तार केवल भौतिक और तकनीक क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने नैतिक और मानवीय मूल्यों को मजबूत करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: श्रोताओं, यदि मनुष्य केवल अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग स्वार्थ के लिए करेगा, तो ये विकास विनाश का कारण बन सकता है कशिश। इसीलिए आवश्यकता है कि वो अपने विकास के साथ साथ समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। श्रोताओं, आज के युग में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी इस परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है।
0: बिल्कुल।
2: हमारे पास नई सोच है, नई ऊर्जा है और नए सपने हैं। यदि हम अपनी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करें, तो हम न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं, बल्कि पूरे समाज और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी जी जी।
2: इसीलिए साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं असीमित है और हम चाहे तो लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। ये विस्तार केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे आंतरिक विकास का भी प्रतीक है। लेकिन इस विकास के साथ साथ हमें अपने नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी को भी नहीं भूलना है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, हम देखते हैं कि क्षमताओं का विस्तार तभी सार्थक है जब वह मानवता के लिए हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हो और समाज के विकास में भी मदद करें, क्योंकि शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती है दोस्तों।
1: जी हाँ,
0: हम कहना चाहेंगे आपसे कि सबसे बड़ी सीमा हमारे अंदर ही होती है, वो है डर, आलस और आत्मसंदेह।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और मनीषा, जब हम इन्हें जी लेते हैं, तो असली विस्तार शुरू हो जाता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं और ये एक बहुत सुंदर यात्रा है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमाओं को तोड़ना ही नहीं, सही दिशा में बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, इन सब से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य की क्षमताएं आज भी सीमाओं का विस्तार कर रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें कमजोर बना रही हैं।
2: बिल्कुल।
1: जहाँ पहले सीमाएं हमें अलग करती थी साथियों, वहीं आज समानताएं हमें जोड़ रही हैं। हमें इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए और इसका उपयोग एक बेहतर समाज बनाने के लिए करना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, हमें अपने सांस्कृतिक पहचान और विविधताओं को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि साथियों दुनिया एक सुंदर और संतुलित स्थान बन सके। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं ही वह शक्ति है जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकती है।
2: बिल्कुल।
1: और सीमाओं को

0: चरित्र को भी ऊंचा उठाता है, तभी उसका विकास सच्चे अर्थों में पूर्ण होता है।
1: जी हाँ,
0: आज का युवा इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है, मनीषा और कशिश। अगर वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो वह न केवल अपनी सीमाओं को पार करेगा बल्कि समाज के लिए भी नई राह खोलेगा।
1: बिल्कुल,
0: हर छोटे प्रयास, हर नई सोच और हर सकारात्मक कदम इस विस्तार की एक नई शुरुआत बन सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
2: बिल्कुल,
1: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
3: बिल्कुल,

0: अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने दोस्त कशिश पारशर को।
3: नमस्कार।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागुन रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं खजूर और बांस का महत्व आदिवासी संस्कृति में।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम देखते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को ऐसे ऐसे उपहार दिए हैं जो केवल भोजन या उपयोग की वस्तु ही नहीं है, बल्कि जीवन को सरल बनाने वाली चीजें हैं, सुंदर बनाने वाली चीजें हैं और समृद्ध बनाने का माध्यम भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि खजूर और बांस ऐसे ही दो अनमोल प्राकृतिक उपहार है। एक ओर खजूर अपने पौष्टिक गुणों और औषधीय महत्व के कारण प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर बांस अपनी मजबूती, उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण में भूमिका के कारण विशेष स्थान रखता है।
0: बिल्कुल,
1: दोनों ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संस्कृति, रोजगार और स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में जब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है, तब खजूर और बांस का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातचीत भी चल रही थी और विषय भी आपको बताया था कि आज का विषय है खजूर और बांस का महत्व। जैसे कि अंजलि कहा गया है कि प्रकृति का हर उपहार मानव जीवन का आधार है और उसमें खजूर और बांस भी आते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि आदिवासी संस्कृति प्रकृति के बहुत करीब मानी जाती है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन आदिवासी जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज केवल प्रकृति का उपयोग नहीं करता बल्कि उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान भी देता है। यही कारण है श्रोता साथियों कि उनके जीवन में हर पेड़, हर पौधा और हर प्राकृतिक वस्तु का एक विशेष महत्व होता है।
0: बिल्कुल,
1: इनमें खजूर और बांस का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि खजूर और बांस केवल उपयोगी वस्तुएं नहीं है बल्कि आदिवासी जीवन, संस्कृति, परंपरा, आजीविका और त्योहारों का सामाजिक व्यवस्था का आधार है। इनसे भोजन मिलता है, घर बनाते हैं, रोजगार मिलता है, कला विकसित होती है और जीवन की अनेक आवश्यकताएं पूरी होती हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आदिवासी समाज की सादगी, मेहनत और प्रकृति से जुड़ाव को समझना हो तो हमें खजूर और बांस के महत्व को भी समझना जरूरी है। आज आधुनिकता के दौर में जब पारंपरिक जीवन शैली बदल रही है तब भी कई आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। खजूर और बांस आज भी उनके जीवन में वही सम्मान रखते हैं जो वर्षों पहले रखते थे।
0: जी हाँ,
1: केवल पेड़ या घास नहीं है बल्कि आदिवासी पहचान का प्रतीक है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि खजूर एक मीठा और पौष्टिक फल है जो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के कई राज्यों में खजूर की खेती भी की जाती है और ये फल बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि खजूर में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन और कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं।
1: जी हाँ,
0: खजूर का पेड़ भी बहुत उपयोगी होता है और इसकी पत्तियों से चटाइयां, टोकरियां और सजावटी वस्तु बनाई जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसके तने का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है श्रोताओं। और इस प्रकार खजूर केवल एक फल नहीं है बल्कि अनेक प्रकार से मानव जीवन के काम आने वाला वृक्ष है। कहा गया है अंजलि कि खजूर का मीठा स्वाद स्वास्थ्य और शक्ति का प्रसाद है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई आदिवासी क्षेत्रों में खजूर के पेड़ों से रस निकाला जाता है। इस रस का उपयोग

0: से उसका आनंद लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: खजूर के फल, पत्ते और रस से आदिवासी परिवारों को आय प्राप्त होती है। कई लोग खजूर बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण बाजारों में खजूर की अच्छी मांग रहती है। खजूर से बने उत्पाद के कारण महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। वे खजूर सुखाने, पैक करने और बेचने का काम करती हैं।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि आदिवासी समाज पारंपरिक औषधियों का उपयोग करता है। खजूर को कमजोरी दूर करने और शरीर को ताकत देने वाला माना जाता है। कई लोग इसे प्राकृतिक दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि खजूर की खेती किसानों के लिए आय का अच्छा स्रोत बनती जा रही है। इसकी मांग देश और विदेश दोनों जगह बढ़ रही है और हम देखते हैं कि खजूर से जैम, मिठाई, सिरप और अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिससे छोटे उद्योग को भी रोजगार मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खजूर आधारित उद्योग लोगों को स्वरोजगार प्रदान करते हैं। महिलाएं भी इससे जुड़े छोटे व्यवसायों में भाग लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खजूर केवल पोषण ही नहीं देता बल्कि आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि खजूर की खेती को अपनाएंगे तो रोजगार और समृद्धि अपने आप ही बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि आदिवासी जीवन में खजूर का क्या महत्व है। आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे बांस के महत्व के बारे में। लेकिन क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए कि खजूर का क्या महत्व है और किस तरीके से यह औषधीय तौर पर भी प्रयोग में आता है। यहीं जागृति जी बात करें बांस की, तो श्रोता साथियों, बांस को गरीबों की लकड़ी भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और अनेक उपयोगों में आता है। भारत में कई आदिवासी क्षेत्र हैं जहां इसका विशेष महत्व है। इसे घर बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। श्रोता साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में बांस से घर बनाए जाते हैं। बांस हल्का और मजबूत और टिकाऊ होता है। इससे दीवारें, छत और बाड़ बनाई जाती है। बांस के घर प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं और गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में आरामदायक रहते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हमने खजूर के बारे में बात की, यहाँ अगर जैसे कि बांस के बारे में बता रहे हैं, तो बांस को गरीबों की लकड़ी भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में प्रकृति का सबसे बहुमूल्य संसाधन है। बांस एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो कम समय में तैयार हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी मजबूती और लचीलापन है। हम देखते हैं कि पर्यावरण का सच्चा मित्र माना जाता है बांस। ये वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती देती है जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हमने अभी कहा कि बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए वनों पर दबाव कम करने में मदद करता है। यदि लकड़ी की जगह बांस का अधिक उपयोग किया जाए तो पेड़ की कटाई कम हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: आज हम देख रहे हैं अंजलि कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बांस को एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। श्रोताओं, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में बांस का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: यह हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि आदिवासी लोक संगीत में बांस से बने वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। बांसुरी, नगाड़ों के हिस्से और अन्य वाद्य यंत्र बांस से ही बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: त्योहारों और नृत्यों में भी इन वाद्य यंत्रों की धुन आदिवासी संस्कृति की पहचान बनती है। कई आदिवासी समुदायों में इसे शुभ माना जाता है। विवाह मंडप, धार्मिक स्थल और उत्सवों की सजावट में बांस का उपयोग किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में नवजात शिशु के स्वागत और नए घर के निर्माण में भी इसका विशेष प्रयोग होता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि बांस पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह मिट्टी कटाव को रोकता है और वातावरण को स्वच्छ बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: आदिवासी समाज बांस के संरक्षण पर विशेष ध्यान देता है क्योंकि वे जानते हैं कि प्रकृति की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा है।
1: और इसी के साथ जैसे कि बांस को लेकर हमारे श्रोता साथियों को और भी बताएं, तो गांव में बांस का जीवन से गहरा संबंध है।
0: बिल्कुल,
1: किसान खेतों में सहारे के लिए बांस का उपयोग करते हैं। ग्रामीण महिलाएं बांस से टोकरियां, चटाई और हस्तशिल्प वस्तु बनाकर आय अर्जित करती है। हम देख सकते हैं कि हस्तकला भारतीय संस्कृति की पहचान है। कई कलाकार बांस से सुंदर सजावटी वस्तु बनाते हैं जिनकी मांग देश विदेश में होती है। अंजलि, इससे ग्रामीण कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। श्रोताओं, आज हम देखते हैं कि सरकार भी बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
0: बिल्कुल,
1: ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। आज का समय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का समय है। प्लास्टिक और रासायनिक वस्तुओं के बढ़ते उपयोग ने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया अंजलि। ऐसे में बांस और खजूर जैसे प्राकृतिक संसाधन हमें टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, बांस से बने उत्पाद पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, वहीं खजूर जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। यदि हम इनका सही उपयोग करें तो मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि आदिवासी जो समाज है वो हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे जिया जाता है। वे जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि खजूर और बांस का महत्व केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सादगी, मेहनत, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण प्रेम का प्रतीक है। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, तब आदिवासी जीवन शैली और उनकी परंपराएं समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: आदिवासी संस्कृति में खजूर और बांस का महत्व बहुत ही गहरा और व्यापक है। ये केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता के आधार है। खजूर आदिवासी समाज को भोजन, पोषण और आय प्रदान करते हैं, जबकि बांस उनके घर, कला, संगीत और रोजगार का प्रमुख साधन बनता है। इन दोनों ने आदिवासी जीवन को सरल, संतुलित और प्रकृति के करीब बनाए रखा है। आदिवासी समुदाय ने हमेशा प्रकृति का सम्मान किया और उसे उतना ही लिया जितना आवश्यकता थी। यही सोच जागृति जी आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा है।
1: बिल्कुल,
0: आधुनिकता के इस दौर में जरूरत है श्रोता साथियों कि हम आदिवासी संस्कृति और उनके पारंपरिक ज्ञान को समझे और उसका सम्मान करें। खजूर और बांस से जुड़ी परंपराओं से बचाना केवल आदिवासी समाज की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। जब तक प्रकृति और संस्कृति का यह रिश्ता जीवित रहेगा तब तक मानव जीवन में संतुलन और संवेदनशीलता बनी रहेगी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि खजूर और बांस दोनों हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। खजूर कठिन परिस्थितियों में भी मीठा फल देता है जबकि बांस हमें विनम्रता और लचीलापन सिखाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, तेज हवा आने पर बांस झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ये दोनों प्रकृति के ऐसे शिक्षक हैं जो बिना बोले जीवन का ज्ञान देते हैं। यदि मनुष्य प्रकृति से सीखना शुरू कर दे तो श्रोताओं उसका जीवन और अधिक संतुलित और सफल बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा भी गया है कि जो प्रकृति से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। और हम कह सकते हैं कि खजूर और बांस दोनों मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। खजूर स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक विकास का स्रोत है जबकि बांस पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और ग्रामीण विकास का आधार है।
0: जी हाँ,
1: ये दोनों हमें प्रकृति के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता का एहसास कराते हैं। आज आवश्यकता इस बात की श्रोताओं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, उनका संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों को भी इनके महत्व के बारे में जागरूक करें। यदि हम प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को बचाकर रखेंगे अंजलि, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि आदिवासी संस्कृति में बांस और खजूर का क्या महत्व है और किस तरीके से इसके ढेर सारे फायदे हमें हमारी प्रकृति पर देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल

0: बांस और खजूर के महत्व को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी आशा के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा सुराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों, प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हो आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM जी, और हाँ? आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में।
0: जी जी
1: साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: जी बिल्कुल कशिश,
1: और वो है मनीषा गुस्सा, तनाव और शरीर का संबंध। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली में भागदौड़, प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियां और अनिश्चितता इतनी बढ़ चुकी है कि तनाव और गुस्सा अब आम बात बन चुके हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये भावनाएं केवल मन तक सीमित नहीं रहती बल्कि हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि गुस्सा और तनाव केवल मानसिक स्थिति नहीं है बल्कि ये शरीर के अंदर कई जैविक प्रक्रियाओं को बदल देते हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि दोस्तों, इन्हें समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं।
0: जी जी,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि गुस्सा और तनाव हमारे शरीर पर कैसे असर डालते हैं।
0: जी जी,
1: इनके बीच संबंध क्या है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गुस्सा, तनाव और शरीर के संबंध को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर कशिश हम बात करें गुस्सा क्या है, तो हम देखते हैं कि गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है साथियों, जो तब उत्पन्न होती है जब हमें अन्याय, असंतोष या निराशा का अनुभव होता है। यह हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया के रूप में आता है साथियों। थोड़ा बहुत गुस्सा सामान्य है और कभी कभी यह हमें अपनी बात रखने की ताकत भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, जब गुस्सा बार बार और बहुत अधिक आने लगे तो यह हमारे शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर इसी के आगे हम बात करें मनीषा तनाव की, तो देखते हैं कि तनाव वह स्थिति है जब हम मानसिक या शारीरिक दबाव महसूस करते हैं।
0: जी जी
1: साथियों, यह दबाव किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि काम का बोझ, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक चिंता या फिर भविष्य की असुरक्षा।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आमतौर पर तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव।
0: जी हाँ
1: साथियों, अगर सकारात्मक तनाव की बात करें तो जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वो है सकारात्मक तनाव, और जो हमें कमजोर और बीमार बना देता है
0: जी
1: वह है नकारात्मक तनाव। श्रोता साथियों, गुस्सा और तनाव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं।
0: जी हाँ
1: जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सहनशीलता कम हो जाती है और हम जल्दी गुस्सा करने लगते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: वहीं अगर बार बार गुस्सा करने से हमारा तनाव और भी बढ़ जाता है साथियों, यानी कि ये एक तरीके का सर्कल है, तनाव, गुस्सा और अधिक तनाव, फिर गुस्सा। दोस्तों, इस चक्र को समय पर नहीं अगर तोड़ा जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम बात करें कि गुस्सा और तनाव का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, हम देखते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर के कुछ हार्मोन होते हैं जो कि श्रोता साथियों बढ़ जाते हैं। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लगातार ऐसे ही होने से हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, हार्ट अटैक का खतरा भी कशिश बढ़ सकता है।
1: जी
0: दिल की बीमारियां बढ़ जाती है साथियों। इससे हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं कि तनाव और गुस्सा हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। श्रोता साथियों, इससे याददाश्त कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता हमारी घट जाती है और नकारात्मक विचार भी बढ़ने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोशिश लंबे समय तक तनाव में रहने से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं भी हो सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें पाचन तंत्र की, तो साथियों तनाव का सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: इससे गैस, एसिडिटी, भूख न लगना या ज्यादा खाना, पेट दर्द जैसी कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कई बार तो अल्सर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमें तनाव नहीं लेना है। अगर बात करें प्रतिरक्षा प्रणाली की, तो दोस्तों तनाव और गुस्सा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं।
0: जी हाँ कशिश,
1: इससे बार बार बीमार पड़ना, संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ अगर हम बात करें कि नींद को प्रभावित कैसे करती है, तो श्रोता साथियों तनाव और गुस्सा हमारी नींद को भी खराब कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमें नींद नहीं आती है, बार बार नींद टूट जाती है हमारी, सुबह थकान होने लगती है। श्रोता साथियों, ये समस्या हमारे लिए आम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ अगर बात करें कि मांसपेशी और शरीर दर्द की, तो हम देखते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं कशिश, तो शरीर की मांसपेशियां तनाव ग्रस्त हो जाती हैं। गर्दन और कंधे में दर्द होता है श्रोता साथियों, सिर दर्द होता है और पीठ दर्द जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से गुस्सा, तनाव जो है उसके क्या हमारे शरीर पर प्रभाव होते हैं।
0: जी जी,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है गीत से पहले भी,
1: जी जी,
0: गुस्सा तनाव का शरीर से क्या संबंध है और क्या शरीर पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। यही अगर बात करें श्रोता साथियों कि गुस्सा और तनाव जो है उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो गुस्सा और तनाव के कई कारण होते हैं मनीषा, जैसे कि काम का दबाव, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद, सोशल मीडिया का प्रभाव और नींद की कमी, और साथ ही अस्वस्थ जीवन शैली।
1: जी जी
0: दोस्तों, हम देखते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से हमारे शरीर में गुस्सा और तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी जो दिनचर्याएं हैं उन पर भी असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण अक्सर हम बीमार रहते हैं, संक्रमण से पीड़ित रहते हैं, और हमें बार बार कह सकते हैं कि डॉक्टर या फिर अस्पताल के चक्कर लगाने होते हैं।
1: जी हाँ कशिश, ये तो हमने बातें की गुस्सा और तनाव के कारणों की। यही अगर हम बात करें गुस्सा और तनाव को हम नियंत्रित कैसे करें,
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों सबसे पहले हमें गहरी सांस लेनी है। जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लीजिए, यह तुरंत शरीर को शांत करता है कशिश।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को रोजाना योग और ध्यान करना चाहिए, जिससे इनका मन भी शांत रहेगा और तनाव भी कम होगा।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हमारे श्रोता साथियों को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर में कशिश खुशी के हार्मोन होते हैं जो कि बढ़ते हैं और तनाव को भी ये कम करते हैं। इसी के साथ ही श्रोता साथियों, काम को सही तरीके से बांटें और समय का सही उपयोग करें और अपने काम को सही समय पर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा तनाव भी कम होगा और हम स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें सकारात्मक सोच की,
1: जी,
0: तो दोस्तों नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच को बना रखें।
1: जी हाँ कशिश,
0: आपको पर्याप्त नींद लेने की भी जरूरत है श्रोता साथियों, क्योंकि कई बार अनिंद्रा की समस्या जब हो जाती है या फिर हम नींद समय पर नहीं लेते हैं, तो इसके कारण भी कह सकते हैं कि समस्याएं हैं वो हमारे शरीर पर होती है।
1: जी जी,
0: ऐसे में दोस्तों आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी के साथ अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आप जरूर साझा करें। इससे श्रोता साथियों, अगर आप किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं या तनाव में हैं, तो अपने किसी दोस्त से अगर आप इस बात को या फिर इस तनाव से, जो जिस चीज का आपको तनाव है उसको लेकर अगर आप उनसे कुछ बातें साझा करेंगे, तो इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपको संतुष्टि भी मिलेगी।
1: जी जी
0: दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि गुस्सा और तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं है।
1: जी जी,
0: अगर हम इन्हें समय रहते नियंत्रित कर लें मनीषा, तो हम एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में दोस्तों याद रखें कि शांत मन ही स्वस्थ शरीर की कुंजी है। गुस्सा कम, मुस्कान ज्यादा, तनाव कम, संतुलन ज्यादा।
1: जी हाँ कशिश, तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कह सकते हैं कि गुस्सा और तनाव केवल मानसिक समस्या नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं साथियों। ये धीरे धीरे हमारी सेहत को अंदर से कमजोर कर देते हैं। कशिश, हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। हमें ये समझना होगा साथियों कि हर समस्या का समाधान गुस्से से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और जीवन शैली को संतुलित रखें कशिश, तो हम गुस्से और तनाव को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही खुशहाल जीवन की पहचान होते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ऐसे में कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, वैसे तो वर्तमान में गुस्सा और तनाव आम बात हो चुकी है।
1: जी जी,
0: लेकिन इसे हल्के में लेना हमारे लिए सही बात नहीं है। आज जैसा कि हमने कार्यक्रम के माध्यम से गुस्सा, तनाव और शरीर के गहरे संबंध को समझा है साथियों,
1: जी जी,
0: इन सभी बातों से ये बात तो साफ हो जाती है, ये केवल भावनाएं नहीं है बल्कि हमारे पूरे जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं।
1: जी जी,
0: ऐसे में याद रखिए साथियों कि गुस्सा एक चिंगारी है जो अगर संभाली न जाए तो आग बन जाती है। तनाव एक बोझ है जिसे अगर समय पर उतारा न जाए तो ये हमें अंदर से कमजोर कर देती है।
1: जी जी,
0: लेकिन अच्छी बात तो यहाँ पर ये है मनीषा कि इन दोनों पर हमारा नियंत्रण संभव है। छोटी समझदारी, थोड़ी सी सजगता और थोड़ी सी सकारात्मक सोच श्रोता साथियों हमें इनसे बचा सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सही प्रतिक्रिया ही समाधान है।
1: जी जी,
0: अपने मन को शांत रखें साथियों, अपने शरीर का ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी जी।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिए आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिए, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ने आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में, जहाँ साथियों हम बात करते हैं हमारे भविष्य की, हमारे सपनों की और हमारे जीवन से जुड़े हकीकत की। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। साथियों, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। बात कर रहे हैं हार से जीत का सफर। दोस्तों, हार ये शब्द सुनते ही हमारा दिल छोटा सा हो जाता है, या फिर कहूँ तो टूट सा जाता है और हौसला भी डगमगा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में हार अंत होती है या फिर वही हार हमें जीत की ओर ले जाने का पहला कदम होती है? आज हम कार्यक्रम के माध्यम से इसी सच्चाई को समझेंगे कि हार आखिर है क्या, हार हमें कमजोर बनाती है या हमें आगे बढ़ाती है। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, क्योंकि यहाँ पर हम पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर हमारी बातचीत की फिर से शुरुआत करेंगे।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है गीत से पहले, और विषय के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हार से जीत के सफर को लेकर। तो श्रोता साथियों, पहले जान लेते हैं कि हार आखिर होती क्या है। दोस्तों, हार का मतलब सिर्फ हार जाना नहीं होता, बल्कि ये एक संकेत होता है कि अभी हमें और कुछ बड़ा सीखना है या फिर खुद को बेहतर बनाना है। अगर जिंदगी में दोस्तों कभी हार न मिले तो जीत की कीमत भी हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हार एक ऐसी चीज है जो अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो उस समय तो उसका मूल्य उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब वह उस हार को एक अवसर के रूप में देखता है तो उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मिल जाता है साथियों। और यही वास्तविक सत्य है, क्योंकि हार व्यक्ति को गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। बस हम पे ये निर्भर करता है साथियों कि हम हार को किस रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो हार को डर के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम आपको बताएं तो बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि अगर वो अपने जीवन में असफल हो गए तो क्या होगा, और कुछ लोगों को तो लोगों की बातों का भी डर रहता है और खुद पर भरोसा भी नहीं रहता। लेकिन दोस्तों ऐसे में हमें ये याद रखना है कि जो हार से डरता है वह कभी जीत नहीं सकता। हमें दोस्तों हार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार को स्वीकार करेंगे तो हो सकता है वो हार हमारे जीवन में एक नया रास्ता लेकर आई हो सफलता का। इसलिए आपको कभी भी हार से निराश न होकर हार को स्वीकार करना चाहिए साथियों, क्योंकि हार को स्वीकार करना सबसे पहला कदम हो सकता है सफलता की ओर बढ़ने का। क्योंकि दोस्तों यह मानना हम हार गए ये कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत होती है, इससे हम आगे बढ़ पाते हैं। साथ ही हमें खुद का विश्लेषण भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हार के पीछे भी ढेर सारे कारण होते हैं, जैसे कि मेहनत की कमी, गलत रणनीति, ध्यान भटकना। दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से भी कई बार हमें असफलता मिलती है और हम हार जाते हैं। इसलिए अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हार को तो हमें स्वीकार करना ही है, लेकिन उसके बाद हमें ये पता करना है कि दोस्तों हम हार क्यों गए, यानी कि ऐसी क्या कमी रह गई आपकी मेहनत में जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों आपको बताऊं तो हिम्मत बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हार के बाद सबसे जरूरी चीज होती है हिम्मत की। ऐसे में आप याद रखिए कि हार आपको रोकती नहीं है बल्कि आपको मजबूत बनाती है साथियों। इसलिए हार से डरने के बजाय हार को एक नई उम्मीद की तरह आप स्वीकार करें। इससे श्रोता साथियों आपको अंदर से हिम्मत आएगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ने के लिए तत्पर रह जाएंगे साथियों। तो जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है और हम हार से जीत के सफर की ओर बढ़ रहे हैं साथियों, तो ये बातें और भी आगे जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी ले, एक पल तो अब हमें जीने दो,

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि हमें हार को हराना कैसे है, जैसा कि हमने जाना था कि हमें हार को स्वीकार करना है साथियों, हिम्मत बना के रखनी है और हमें हार जाने के कारणों के बारे में भी जानना है कि हमारी कमी कहाँ पर रह रही है। इसी के बाद दोस्तों, अगर बात करूँ तो आप अगर सफलता चाहते हैं और जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सही रणनीति अगर नहीं बनी हुई होती है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लक्ष्य की ओर बढ़ना जानते हैं लेकिन जब वह लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सही योजना नहीं बनाई हुई होती है, जिसके कारण भी असफलता मिलती है और वो लोग असफलता मिलने के बाद निराश हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी सफलता की ओर बढ़ने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किया है उसके छोटे छोटे कदम आपको बढ़ाने हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना है साथियों, क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होगा, हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस संघर्ष से हम डर जाएंगे दोस्तों तो हम सफलता की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एकदम बड़ी जीत की उम्मीद आप न करें, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। साथ ही लगातार प्रयास करने की आदत को भी अपनाएं दोस्तों, क्योंकि कई बार कुछ लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन अगर उन्हें असफलता मिली तो वो निराश हो जाते हैं। इसलिए सफलता एक बार में कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी और अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन साथियों आप अपनी सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंच ही जाएंगे। इसलिए साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि असली जीत होती क्या है। दोस्तों, असली जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी या फिर इनाम पाना नहीं होता, बल्कि असली जीत तो ये है कि हमारा खुद पर विश्वास है, हर हार के बाद भी हम फिर से उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते रहना हमने सीखा है। दोस्तों, ये जो चीजें हैं वही असली जीत मानी जाती है। हम देख सकते हैं कि अगर आज हम असफल हो गए हैं और हम हार का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है, बल्कि दोस्तों हमें ये याद रखना है कि आज की हार ही कल की जीत की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आप खुद से ये वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे बल्कि फिर से मेहनत करेंगे और दोस्तों आप फिर खुद देखेंगे कि आपकी मेहनत आपको कहाँ तक ले जाती है। तो दोस्तों, हार अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है सफलता की। गिरना जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है फिर से उठना। अगर दोस्तों आप हार को एक सीख के रूप में बदल देंगे तो यकीन मानिए आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है, कभी खुशी बनकर तो कभी हार बनकर। लेकिन याद रखिए, हार हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आती है दोस्तों। जब जब आप गिरेंगे तब आप खुद से सिर्फ एक बात कहिएगा कि यह अंत नहीं, यह तो मेरी नई शुरुआत है। क्योंकि असली जीत वही है साथियों, जो हार के बाद भी मुस्कुराना सिखाए, जो गिरकर भी उठना सिखाए और जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। तो आज से ही दोस्तों, अपनी हर हार को एक सीख बनाइए, हर ठोकर को एक कदम बनाइए और हर डर को अपनी ताकत बना लीजिए। यकीन मानिए, आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका हौसला साथियों आपको जरूर अपनी जीत तक ले जाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अभी ही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो, 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बोल, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थी जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागुर रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातचीत रहने वाली है हमारे श्रोता साथियों के साथ में कि आत्मविश्वास की कमी के कारण बढ़ता तनाव क्या है और आत्मविश्वास का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि मनुष्य का जीवन संघर्षों, चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है, ये हम सभी भी देखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और हर दिन हमें नई परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करता है तो हम देखते हैं कि कोई डर और घबराहट और तनाव में टूट जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण श्रोता साथियों आत्मविश्वास होता है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है अंजलि। वहीं आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति को तनाव, भय, असफलता और निराशा की ओर धकेल देती है। आज के समय में हम देखते हैं कि अधिकांश लोग तनाव से जूझ रहे हैं।
0: जी जी,
1: विद्यार्थी परीक्षा के दबाव में है, युवा नौकरी और भविष्य की चिंता में है, महिलाएं परिवार और जिम्मेदारियों के बोझ में है, और बुजुर्ग अकेलेपन के तनाव से गुजर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: इन सभी समस्याओं के पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि आत्मविश्वास की कमी बहुत ज्यादा है। इसलिए कहा गया है कि जिसके मन में विश्वास होता है वही हर कठिनाई के पास होता है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि जागृति जी, हमने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है आत्मविश्वास की कमी के कारण बढ़ता तनाव और उसके समाधान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी की आत्मविश्वास वह ताकत है जो व्यक्ति को यह भरोसा दिलाती है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन जब यही विश्वास कमजोर पड़ जाता है तब व्यक्ति छोटी छोटी बातों में डरने लगता है, घबराने लगता है और धीरे धीरे तनाव का शिकार हो जाता है। श्रोता साथियों, आज गांव हो, शहर हो, बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या युवा, बहुत से लोग आत्मविश्वास की कमी और तनाव से जूझ रहे हैं। कई लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वे अपनी तुलना जागृति जी दूसरों से करते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि असफलता से बहुत से लोग डरते हैं और समाज की बातों से प्रभावित होकर अपने मन ही मन हार मान लेते हैं और यही स्थिति धीरे धीरे मानसिक तनाव को बढ़ा देती है।
1: जी हाँ अंजलि, और कहा भी गया है कि स्वयं पर भरोसा ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। श्रोताओं, जब किसी व्यक्ति को बार बार नीचा दिखाया जाता है, उसकी कमियां गिनाई जाती है या उसकी तुलना दूसरों से की जाती है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: और विशेषकर बच्चों और युवाओं पर इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता या शिक्षक हर समय केवल गलतियां निकाले तो बच्चा स्वयं को अयोग्य समझने लगता है।
0: जी जी,
1: कहा गया है कि प्रोत्साहन से आत्मविश्वास बढ़ता है और अपमान से आत्मविश्वास डगमगाता है। और हम देखते हैं कि अंजलि की बहुत से लोग असफल होने के डर से कोई नया काम शुरू ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि यदि वे हार गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। यही डर धीरे धीरे उनका तनाव का रूप ले लेता है। असफलता जीवन का हिस्सा है श्रोताओं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को इसे स्वीकार नहीं करने देती है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं अंजलि कि लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं।
0: बिल्कुल,
1: किसी की सफलता देखते हैं, किसी की सुंदरता देखते हैं या किसी का धन देखकर लोग स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। ये तुलना आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है श्रोताओं।
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति मानसिक तनाव में रहने लगता है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी पहचान आप खुद बनाइए, तुलना में जीवन को मत गवाइए, क्योंकि जब तक हम तुलना में अपना जीवन गवाएंगे तब तक हम अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि सामुदायिक जीवन में आत्मविश्वास की कमी का असर दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: आत्मविश्वास की कमी के कारण लोग अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, निर्णय लेने से डरते हैं और नए अवसरों से पीछे हट जाते हैं। श्रोता साथियों, समाज में अपनी पहचान बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ समाज के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास करना। यह विश्वास होता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं गलतियों को सुधार सकता हूँ, मैं कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ, मैं अपने स्वयं को बेहतर बना सकता हूँ। आत्मविश्वासी जो व्यक्ति होता है वो घमंडी नहीं होता, वो अपनी सीमाओं को भी समझता है और अपनी क्षमताओं को भी पहचानता है।
1: बिल्कुल,
0: वह असफलता से श्रोता साथियों टूटता नहीं है, उनसे सीखता है। क्योंकि जागृति जी, जब व्यक्ति हर काम में खुद को कमजोर समझने लगे, दूसरों से डरने लगे, निर्णय लेने से घबराए और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगे, तब यह आत्मविश्वास की कमी कहलाती है। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये नकारात्मक विचार धीरे धीरे तनाव, चिंता और डर को बढ़ाते जाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि नकारात्मक सोच आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जो व्यक्ति हर समय में नहीं कर सकता सोचता है, वो धीरे धीरे खुद को कमजोर मानने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी सोच व्यक्ति को तनाव, चिंता और अवसाद की ओर ले जाती है। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि कई बार परिवार और समाज की अपेक्षा इतनी बढ़ जाती है अंजलि कि व्यक्ति दबाव महसूस करने लगता है। जब वो उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसका आत्मविश्वास जो होता है वो टूटने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि युवा वर्ग आज इसी दबाव के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति के मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है श्रोताओं।
0: जी जी,
1: ऐसा व्यक्ति हर समय चिंता में रहता है, उसे लगता है कि वो किसी काम में सफल ही नहीं हो पाएगा, मानसिक तनाव हो जाता है। जैसे कि आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को हर समय असुरक्षित महसूस करवाती है।
0: जी जी,
1: वो छोटी से छोटी बातों में भी घबरा जाता है, चाहे परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या किसी नई जिम्मेदारी के समय उसका तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे तनाव मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए कहा गया है कि कमजोर आत्मविश्वास मन को तनाव से भर देता है। इसलिए श्रोता साथियों, हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि चाहे हमारे अंदर कितना भी डर क्यों ना हो, लेकिन हमारे आत्मविश्वास को हमें नहीं खोना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि जब बच्चों और युवाओं को हर समय डांटा जाता है, उनकी कमियां गिनवाई जाती है और उनकी तुलना दूसरों से की जाती है, तो आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम अनजाने में ही बच्चों को बोल देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे हैं, तुम हमेशा गलत ही करते हो। ऐसे शब्द व्यक्ति के मन पर गहरा असर डालते हैं। कई लोग केवल इसलिए कोशिश नहीं कर पाते जागृति जी, क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे सोचते हैं कि अगर वे असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे, और यह डर धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। आज सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में श्रोता साथियों, लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। किसी के पास क्या अच्छा घर है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, कोई पढ़ाई में आगे है, इन सबको देखकर व्यक्ति खुद को छोटा समझने लगता है। अगर बचपन में बच्चों को प्यार, प्रोत्साहन और सम्मान नहीं मिलता है, तो वे बड़े होकर आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, सामाजिक दबाव भी आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। कई लोग अपनी परिस्थितियों के कारण खुद को कमजोर समझने लगते हैं श्रोता साथियों, और कुछ लोग गलती होने पर भी खुद को पूरी तरह असफल मान लेते हैं। वे सीखने के बजाय खुद को दोषी देने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि जब व्यक्ति अपनी बात किसी से साझा नहीं करता, मन की बातें दबाकर रखता है, तब उसके भीतर तनाव बढ़ने लगता है, और यही तनाव उसके आत्मविश्वास को दिन ब दिन घटाते जाता है।
1: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास के कारण जो तनाव बढ़ता है, ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे आत्मविश्वास को लेकर, तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति के मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। साथ ही हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि ये जो चीजें होती है वो निर्णय लेने में भी कठिनाई पैदा करती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो सही निर्णय लेने से डरता है, उसे हर समय चिंता रहती है अंजलि कि कहीं उसका निर्णय गलत ना हो जाए। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति को लोगों से दूरी भी बना लेते हैं। वो अपनी बात कभी खुलकर नहीं कह पाते और अकेलापन महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अधिक तनाव के कारण हम देखते हैं कि ये सीधा शरीर पर असर करता है। सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है, कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की कमी केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल।
0: कहा भी गया है कि तनाव शरीर और मन दोनों को कमजोर बना देता है। अंजलि,
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि आत्मविश्वास की कमी वाले लोग हर बात में डर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे गलती कर देंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और यह डर मानसिक तनाव को बढ़ावा देता है। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोग छोटे छोटे फैसले लेने में घबराते हैं। वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लगातार तनाव के कारण, जैसा कि जागृति जी आपने बताया, कि कई सारी शारीरिक समस्या भी हो जाती है। श्रोता साथियों, आत्मविश्वास की कमी वाले लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, वे अपनी भावनाएं छिपाने लगते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आने लगती है। ऐसे लोग, जागृति जी, नए अवसर से डरते हैं। वे मंच पर बोलने, नया काम शुरू करने और जिम्मेदारी लेने से भी बचते हैं, इससे उनका विकास रुक जाता है। श्रोता साथियों, समाज में कई महिलाएं अपनी क्षमता होने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी महसूस करती है। इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव, लगातार आलोचना, घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव, शिक्षा और अवसरों की कमी, समाज का डर। लेकिन जब महिलाओं को सम्मान, सहयोग और अवसर मिलते हैं, जागृति जी, तब वे परिवार और समाज दोनों को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ उपाय है, जैसे कि सकारात्मक सोच को अपनाना होगा।
1: बिल्कुल।
0: हर दिन स्वयं से सकारात्मक बातें करनी होगी कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सोच अगर हम रखेंगे तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे विकसित करनी होती है।
1: बिल्कुल।
0: छोटी छोटी उपलब्धियां भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है, इसीलिए अपने हर प्रयास की सराहना करनी होगी। गलतियां जीवन का हिस्सा होती है, उनसे डरने की बजाय उनसे सीखना होगा। साथ ही नकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ आत्मविश्वास बढ़ा रिपीट साथ ही सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का जो साथ होता है वो आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है।
1: बिल्कुल।
0: हम एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में इतना अच्छा था, लेकिन मंच पर बोलने से बहुत डरता था।
1: बिल्कुल।
0: स्कूल में जब भी भाषण प्रतियोगिता होती तो भाग लेने से मना कर देता था। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। शिक्षक की बात रवि के मन में बैठ गई। अंजलि, उसने रोज आईने के सामने बोलने का अभ्यास शुरू कर दिया।
1: बिल्कुल।
0: शुरुआत में वो घबराया, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। श्रोता, कुछ महीने बाद उसने स्कूल की भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया।
1: बिल्कुल।
0: उस दिन रवि ने समझा कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने डर पर होती है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है और जीत के पीछे आत्मविश्वास है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। इसलिए आत्मविश्वास अगर हमें हमारा बढ़ाना है तो अपनी राय और भावनाओं को सम्मान पूर्वक हमें व्यक्त करना है। धीरे धीरे बोलने का अभ्यास आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। इसी के साथ नई जानकारी और नए कौशल व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। इसलिए पढ़ाई, कंप्यूटर, खेती की नई तकनीक, सिलाई कढ़ाई, भाषा सीखना, इन सारी चीजों को सीखने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। श्रोता साथियों, अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। योग और ध्यान भी तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, क्योंकि जागृति जी, अभी हम देखते हैं कि अभी के समय में हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में भी हम देखते हैं कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य नहीं होता है तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से के परिवार के प्रोत्साहन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर घर में सम्मान और संवाद का माहौल हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ जब हम किसी की भी मदद करते हैं तो हमें अपने भीतर जो बहुत सारी जो उपयोगी चीजें हैं उनका एहसास होना चाहिए। यह भावना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ये व्यक्ति को तनाव, भय और निराशा से बाहर निकालकर सफलता की राह पर ले जाती है।
1: बिल्कुल,
0: आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है, जबकि हम देखते हैं कि आत्मविश्वास उसे मजबूत, साहसी और सफल भी बना देता है।
1: जी जी,
0: आज आवश्यक इस बात की है कि हम स्वयं पर भरोसा करना सीखें। बच्चों, युवा और समाज के हर व्यक्ति को प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण मिले ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। हमें याद रखना होगा श्रोताओं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, आत्मविश्वास, मेहनत और निरंतर प्रयास ही उसे महान बनाते हैं। इसलिए आपसे कहेंगे कि खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही हर सफलता की असली पहचान है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा, क्योंकि एक स्वस्थ समाज वही होगा जहां लोग एक दूसरे को नीचा गिराने के बजाय आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समाज को चाहिए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करे, महिलाओं को अवसर दे, युवाओं की बात सुने, असफलता को मजाक में न उड़ाए और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करें। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, लेकिन जब आत्मविश्वास जागृति जी कमजोर पड़ता है तब तनाव, डर और निराशा व्यक्ति को भीतर से जोड़ने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि कोई भी व्यक्ति जन्म से पूरी तरह आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास अभ्यास, अनुभव, प्रोत्साहन और सकारात्मक सोच से विकसित होता है। इसलिए खुद को कमजोर समझने के बजाय अपनी क्षमताओं को हमें पहचानने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर हमारे श्रोता साथियों के साथ ये बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है आत्मविश्वास को लेकर। श्रोता साथियों, आपको कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आत्मविश्वास जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि समाज, परिवार और विद्यालय अगर सहयोगी वातावरण दे तो हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकता है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के बजाय इन सारी चीजों को प्रेरणा के तौर पर आगे बढ़ाते रहे। याद रखिए श्रोता साथियों कि धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखना, नहीं सीखना भी गलत आदत है।
1: बिल्कुल,
0: गलत तब होता है जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। इसलिए अपने मन की आवाज सुनिए, खुद को महत्व दीजिए और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो तनाव के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जलाए रखता है।
1: बिल्कुल अंजलि, स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली वो शक्ति है जो इंसान को हर कठिन परिस्थिति में संभाल कर आगे बढ़ना सिखाती है।
0: बिल्कुल।

0: जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है वो जीवन की परेशानियों से डरता नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और धैर्य से करता है।
1: बिल्कुल।
0: वही आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को धीरे धीरे तनाव में डालती है, चिंता में डालती है, भय में डालती है और निराशा के अंधकार में धकेल देती है। जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बार बार हमारे श्रोता साथियों को यही बात बता रहे हैं।
1: जी जी।
0: ऐसा व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है और जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां भी उसे भारी लगने लगती है।
1: जी जी।
0: आज का समय प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं का समय है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता केवल ज्ञान या साधनों से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए आत्मविश्वास का होना सबसे जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि आत्मविश्वास वो दीपक है अंजलि, जो अंधेरी राहों में भी उम्मीद की रोशनी जगा देती है। ये व्यक्ति को गिरकर फिर से उठना सिखाती है। जब इंसान स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है तब वो असफलता को भी अपनी सफलता की सीढ़ी मान लेता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि आत्मविश्वास केवल सफलता पाने का साधन नहीं है, बल्कि मानसिक शांति संतुलित जीवन की आधारशिला है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब वह कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाता है।
0: बिल्कुल।
1: वही आत्मविश्वास श्रोता साथियों हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर देता है, जैसे कि व्यक्ति धीरे धीरे डर, चिंता, असुरक्षा, तनाव की ओर चले जाता है और यह तनाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि रिश्तों, काम, पढ़ाई और पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: आज श्रोता साथियों आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को केवल सफल बनने की नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने की सीख दें। अगर हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, उनकी तुलना करने के बजाय हमें उन्हें प्रोत्साहन के माहौल में जीना सिखाना होगा। बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि गलती करना हार नहीं है बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं को यह समझना होगा कि जीवन की दौड़ में सबसे जरूरी बात दूसरों से आगे निकलना नहीं है बल्कि अपने भीतर के डर पर जीत पाना है। महिलाओं को अपने निर्णयों और क्षमताओं पर भरोसा दिलाना होगा ताकि वे बिना झिझक अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ सके। इसी के साथ श्रोता साथियों परिवारों की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर का वातावरण यदि सहयोग, सम्मान और संवाद से भरा हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल।
1: एक छोटा सा प्रोत्साहन जागृति जी, विश्वास भरे कुछ शब्द और किसी की बात को ध्यान से सुन लेना भी टूटे हुए मन को संभाल सकता है। समाज को भी यह समझना होगा कि मजाक उड़ाना आसान है लेकिन किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना सबसे बड़ा सहयोग है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि हमें समझना होगा कि तनाव से मुक्त जीवन का सबसे बड़ा उपाय आत्मविश्वास है। यदि परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहन दे, उनकी गलतियों पर केवल आलोचना करने के बजाय उन्हें समझाए तो उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा और वे मानसिक तनाव से दूर रह पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने और निखारने की होती है। जीवन में कभी भी स्वयं को कमजोर नहीं समझना है श्रोता साथियों। हमें परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में विश्वास हो, हौसला हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। आत्मविश्वास इंसान को यह एहसास दिलाता है अंजलि कि वो अकेला नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अपना और उसकी मेहनत है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति ही जीवन में सच्ची खुशी, सफलता और सम्मान प्राप्त करता है।
1: बिल्कुल।
0: जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती श्रोताओं। इसलिए आत्मविश्वास वो चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज के समय में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है लेकिन इसका समाधान केवल दवाइयों में नहीं बल्कि सोच व्यवहार में बदलाव के छिपा है। कह सकते हैं कि जब व्यक्ति खुद की अच्छाइयों को पहचानना शुरू करता है, छोटी सफलताओं को सम्मान देता है और धीरे धीरे अपने डर का सामना करता है तब उसका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और यही मजबूत आत्मविश्वास तनाव को कम करता है और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि गांव-गांव तक इन सारी चीजों को लेकर हमें जागरूकता पहुंचानी होगी जो लोगों के मन को मजबूत करेगी और उनके अकेलेपन को दूर करेगी।
0: बिल्कुल।
1: कह सकते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है बल्कि रोजाना किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करना सीख लेता है वह जीवन की चुनौतियों से डरता नहीं है बल्कि उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। इसलिए अपने मन को कमजोर नहीं मजबूत बनाइए, खुद को कम मत आंकिए और हर दिन अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि मन मजबूत है तो रास्ते भी जरूर निकलते हैं।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, और हमारी बातचीत चल रही थी आत्मविश्वास को लेकर। तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हम मनुष्य का जीवन केवल सांसों का सफर नहीं है, बल्कि संघर्ष, सीख, अनुभव और आत्मनिर्माण की एक निरंतर यात्रा है।
1: बिल्कुल।
0: इस यात्रा में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, अनुकूल होती है, और कई बार विपरीत होती है। ऐसे समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है श्रोताओं, जिसके भीतर आत्मविश्वास की शक्ति होती है।
1: जी जी।
0: आत्मविश्वास इंसान के भीतर वो ऊर्जा भरता है जो उसे कठिन रास्तों पर भी टिके रहने का साहस देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों आपको बार बार यही बात बता रहे हैं, और इसके विपरीत जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझने लगता है, तब उसके मन में डर, असुरक्षा, तनाव जन्म लेने लगते हैं, और यही तनाव धीरे धीरे हमारे विचार, निर्णय और पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज के आधुनिक जीवन में लोगों की बाहरी सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन मन की शांति कहीं खोती जा रही है। बच्चे पढ़ाई के दबाव में हैं, युवा भविष्य की चिंता में हैं, और बड़े लोग जिम्मेदारियों के बोझ में उलझे हुए हैं।
1: जी जी।
0: ऐसे वातावरण में यदि आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाए तो व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो अपनी क्षमताओं पर भी प्रश्न उठाने लगता है। हर अवसर उसे चुनौती नहीं बल्कि डर जैसा दिखाई देता है अंजलि।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आत्मविश्वास केवल सफलता पाने का माध्यम नहीं है श्रोताओं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाने का भी आधार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, मनुष्य का जीवन केवल बाहरी सुविधाओं से नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद साहस, उम्मीद और आत्मविश्वास से बढ़ता है। जब इंसान अपने ऊपर भरोसा खोने लगता है, तब जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी उसे बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे श्रोता साथियों, यही डर और असुरक्षा मानसिक तनाव का रूप ले लेती है। इसलिए आत्मविश्वास को मजबूत बनाना केवल व्यक्तिगत विकास का विषय नहीं है, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल समाज की आवश्यकता भी है। आज के समय में लोग अपनी वास्तविक पहचान से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगे हैं।
0: बिल्कुल।
1: यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी अच्छाइयों को भूलकर केवल कमियों पर ध्यान देने लगते हैं। कोई अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान है, कोई पढ़ाई में पीछे रह जाने से, तो कोई समाज की अपेक्षाओं के बोझ से दबा हुआ है। लेकिन यह समझना जागृति जी हमारे लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है और हर किसी की सफलता का समय भी अलग होता है। इसलिए खुद को दूसरों की नजर में नहीं, अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहचानना होगा।
0: बिल्कुल।
1: जीवन में श्रोता साथियों, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति कभी डरेगा ही नहीं या उससे गलती नहीं होगी। सच्चा आत्मविश्वास तो यह है कि इंसान गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत रखे। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं श्रोता साथियों, वही आगे चलकर मजबूत बनते हैं। असफलता किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होती बल्कि वह एक अनुभव होती है जो भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर देती है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि समाज में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को मानसिक सहारा देना सीखें। कई बार लोग केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। यदि परिवार, मित्र और समाज सहयोगी बन जाए तो तनाव से जूझ रहे जो व्यक्ति हैं उनमें नई उम्मीद मिल सकती है, किसी की हिम्मत बढ़ सकती है। उसकी कोशिश को सहारा हमें देना होगा और उसे सम्मान देना होगा।

0: भी मजबूत करना होगा।
1: जी जी।
0: एक प्रोत्साहन भरा शब्द किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है। हमें अपने जीवन में यही आदत विकसित करनी होगी कि हम स्वयं की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने विकास पर ध्यान दें।
1: बिल्कुल।
0: हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर इंसान अपने भीतर अनोखी क्षमताएं लेकर पैदा होता है। जब व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को पहचानना शुरू करता है अंजलि, तभी उसके भीतर आत्मविश्वास का दीपक जलने लगता है।
1: जी हाँ।
0: ये दीपक न केवल उसके जीवन को रोशन करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसलिए अंत में श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर मन में हौसलों की रोशनी जलती रहे तो कठिन से कठिन राह भी आसान बन जाती है। जो इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है उसके लिए हर नई सुबह उम्मीद लेकर आती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही कि आत्मविश्वास की कमी के कारण किस तरीके से तनाव बढ़ रहा है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।
1: साथी श्रोता साथियों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते ही हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो साथियों पहली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच सरदना मेराठ से ही। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोल है दोस्तों जुगनी जुगनी, और इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे साथियों अनिल जैन, जैन साहब, यमन जैन, मुस्कान जैन, मास्टर विजय जैन जी, और भी दोस्तों जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। जिला खरगोना मध्य प्रदेश से है डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, डॉक्टर सीमा वर्मा, सचिन, मास्टर समराज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी, और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। जिला भागपत से है आसिर अली खान, मोमित नाज, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच जिला भागपत से ही। फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत। गीत के बोले दोस्तों, दिल दीवाना करता ही। साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे अब्दुल्ला संता आबासी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से है गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रेशमी डांगी जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों मस्तानापुरा से ही अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलोचना भगत जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच महाराष्ट्र से ही। फिल्म का नाम है हीरो, गीत के बोले दोस्तों तू मेरा जानू है। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे विकास बंसोड़, रेखा जी, आदिति, वैभव जी, खड़वास से ही आकाश जी, प्रिया जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। डबकी रोड अकलाव से है शुरिका जी, सदानंद कुमार, गौरव जी, आरव और अर्पिता जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। महाराष्ट्र से ही शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जी और इस गीत के अनुरोध करता है साथियों। पोडिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच पंटपुर सिटी से है। फिल्म का नाम है लगान। गीत के बोले दोस्तों सुन मितवा। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे साथियों प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। पंटपुर से है जाकिर मुलानी, सोमिया, सुबान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। कोपर गांव से सूरज जी, वर्षा जी, शारदा जी, मानसी जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। जिला पंजाब से ही बबल साहू, रामदेव साहू जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच मंजू कटीला से है। फिल्म का नाम है याराना, गीत के बोले साथियों सारा जमाना हसीनों का दीवाना। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संताना एमपी से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, आर्य नगर कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगल, मोरस जंगल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगल, नंदी जंगल जी, सुकरी कला से अमित जंगल, कुशल जंगल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगल जी। और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुधर शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त इरिना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जिला हरियाणा से ही, गीत के बोले सारी दुनिया हसीनों का मेला। दोस्तों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत जी, कमरजीत जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को कश्मीर से पीरजादा मेराज उद्दीन जी। और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को रुद्वी नगर से दिलावर खान जी, हसीना बानो, एलिजा नाइमा नाइबा और लड्डू जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ही। फिल्म का नाम है बाजीगर। गीत के बोले दोस्तों, तेरे चेहरे पे वो जादू ही। साथियों, इस गीत के साथ चुना चाह रहे बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी, और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। बोरखेड़ा से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पावर, दिशा कुशल जी, और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों जिला सिरसा से है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच खड़वा मध्य प्रदेश से ही। फिल्म का नाम है विजयपथ। गीत के बोले दोस्तों राहो में उनसे मुलाकात होगी। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं बेबी शालिमा डावर, बेबी हसीमा डावर, बेबी जखीरा जी, बेबी आशा जी खत्री जी, जिला धामपुरी से ही मुशा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जखीरा जी खत्री जी। और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कृत्यपुरी गोस्वामी, लक्ष्मणी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों जिला हरियाणा से ही रवि कुमार जी, रजित कौर, जयप्रकाश रावल, प्रियंका मंत, गुरुकृत, गुरुशब्द सिंह राहुल जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे साथियों हमारे इसी गीत के साथ में, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि, निजा जी, सुप्रीला जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे दोस्तों, सहारनपुरी से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलियस डिकेस्टो जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल ही, तुझ ना देखूं तो चैन आता नहीं है। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन शाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चिपा। इसी बीच जुड़ रहे हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बेबी अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गाजियाबाद से शिषपाल जी, पटेल नगर मारोज से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझूरिया, गीता रानी झंझूरिया, गंतीप झंझूरिया, गुड्डू जी। इस गीत की अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार जी वर्मा, सोनम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल जी मेहरा। कलानूर से जुड़ रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही, तुझे ना देखो तो चैन आता नहीं है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाघ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने अलका जी और कुमार सोनू जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, तुझे ना देखूँ तो चैन आता नहीं है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। गीत के बोल हैं, फूलों के रंग से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, करेली से आमिर अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, शशिम अंसारी, माहिनूर जी। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और निमित जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित मोनू, मानस जी राज। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमर अफरीदी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं फूलों के रंग से। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलाड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है धुंध, गीत के बोल हैं संसार की हर शे का। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से फारूक शेख, परवीन शेख, साइना फारूक, फराज शेख, बेबी मुस्कान। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं यूपी से सूरी चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सुरिता सुजाता चौरासिया, सबो सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, पूजा पिंकी चौरासिया, बाबू शिवा शिवानी चौरासिया। नेहरू चौक पेठन से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव, संगीता जी जाधव। आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं संसार की हर शे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार से। फिल्म का नाम है राज, गीत के बोल ही दीवाना कर रहा है। इस गीत की फरमाइश करता है महेश कुमार और लीसा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांशी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से अभिनव पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, संतोष भाड़की, सुकन्या सुनिया जी और सरिता भाड़की। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं डुमराव से, जीवन सिंह, प्रसाद महोदय जी। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ रहे हैं नारायण इगले, मंगला इगले, राजकुमार इगले, आयुष मेहकर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कासगस से। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, गीत के बोल ही जाने क्यों लोग मोहब्बत। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद साइद सैफी, आबाद खान, मोहम्मद सोमाज सैफी और लीबा जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन जी पाटिल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजूडवारा से यासीन हाशमी, बेगम हाशमी, तोसीफ, तोइनूर और कलीम अंसारी जी। इस गीत के अनुरोध करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश जी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। बक्सर बिहार से जुड़ रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुर रमेश शाहू। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातिमा खातून जी अंसारी। भीड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद जी कर्मा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय बिट्टू, पीपी कुदलेश जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। गीत के बोल है लिखे जो खत तुझे। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नूजी वड़तकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूटन। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं लिखे जो खत तुझे हैं।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे लिखे जो खत तुझे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है बेताब, गीत के बोल ही जब हम जवां होंगे। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। मलियाना सरधाना मेरठ से जुड़ना चाह रहे हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वीएम जी जैन। पथरोड से जुड़ रहे हैं विजय अम्बेडकर, सुनीता अम्बेडकर, अक्षय अम्बेडकर, राधिका जी अम्बेडकर, ऋषिकेश जी। जाकोत राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावले से जुड़ना चाह रहे हैं अजीत सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, आयशा ईशा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से, सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणारी देशमुख, सरवत देशमुख, कुमारी सानवी जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजडुडवारा से शमशुल कमर राहे, साइन फातिमा, अजदान खान, फैजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल, दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। हरिद्वार से जुड़ना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे, मेराब जहां जी। कुंभार गली श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, सविता दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पूनावले पुणे से जुड़ना चाह रही हैं अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, विशाखा सोनवनी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोनी मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही जब हम जवां होंगे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मरहारा से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत की फरमाइश करता है नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशव अब्बासी। सिकंदरा से जुड़ना चाह रहे हैं मुबीब अब्बासी और इशरत परवीन जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, बेटी खेड़ा, जीवन जी खेड़ा। इस गीत की अनुरोध करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कोलने। रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गूजी सिक्का। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूटन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, इशप्रीत शर्मा, प्रतिभाजी शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा गोदरा और सुनीता शर्मा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वेदही जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, कुम्हारी अंकित जोशी, कुम्हारी अंकित जी जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्रीमती जयवंती जी केवट, खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही सुन सुन बरसात की धुन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागो रेडियो 90.8 FM पर। और दोस्तों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो भाइयों बनो आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली सको हमारे अणा पता माते। हमारू पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारू पिन कोड नंबर है 3270

जय गुरु भयन गुरु, आप सबनो हनुमान स्वागत करो हूँ हमारी आज ने हाजिर ने सभा में। आप सभा में रह हो आप सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते। मो हूँ आपने हाथे आपने गुण अंजलि पारेश्वर ने। आज वार सोमवार ने तारीख 18 मई 2026 नो दाड़ो है। भयन गुरु में देखी रहे हो कि अपने स्टूडियो ने खड़ी में हाजिर ने 5 वाक्य के हैं। तब आप शुरुआत करो हाजिर ने सभा में पुनः प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ते की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की। इन में अपने हम रंगा आज न सुविचार ने हाथे भक्ति में गीत अनस क्रम में अपने आगे बढ़ेंगा। हमारी ने तुम्हारी आवाज कार्यक्रम युवाओं की आवाज ने आड़ी आ कार्यक्रम आप हम सकोगा। ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे। इनिस कड़ी में बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत था का जेने कहे बालकनु बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन और कार्यक्रम आप हामरी शको का ठीक 6 वगे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मुँह आपकी गुण अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इनिस कड़ी में अपने आगे बढ़ेंगे अपने किसान भाई बहनों तक की जुड़ कार्यक्रम खेतीबाड़ी आ कार्यक्रम आप हामरी शको का ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मुँह आपकी गुण अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इनिस कड़ी में अपने आगे बढ़ेंगे अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हामरी शको का ठीक

0: आज के सुविचार।
1: सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं।
2: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
1: आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जागृति बोल, आपके कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश वाके है। हो भे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: हो भे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
6: अरे दीदी, क्या करूं, कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
5: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए, इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
6: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
5: ये हुई ना बात गोरी।
4: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
7: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
8: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
7: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
8: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
2: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम तीनों का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज का हमारा विषय है आपसे बातचीत का कि मनुष्य की क्षमताएं सीमाओं को विस्तार करने लगी है। जैसे कि मनीषा और कशिश, मनुष्य सृष्टि का वो अद्भुत प्राणी है जिसे प्रकृति में बुद्धि विवेक और सृजनशीलता का अनुपम वरदान दिया है।
2: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि वो सदैव अपनी सीमाओं को पहचानने के बजाय उन्हें तोड़ने और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा है।
2: जी हाँ,
1: समय के साथ मनुष्य की क्षमता इतनी विकसित हो चुकी है कि वो अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार कर रहा है।
2: जी हाँ,
1: आज का मानव केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक क्षेत्रों में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करने वाले हैं।
0: जी हाँ,
2: लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथी जानते हैं कि हम उन्हें पहले शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
0: जी हाँ,
2: तो क्यों ना आज भी पहले शुरुआत में गीत सुनवा दे।
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम युवाओं की।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य की क्षमताएं सीमाओं का विस्तार करने लगी हैं। जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास निरंतर विकास, परिवर्तन और विस्तार की कहानी है।
1: बिल्कुल,
0: यह विस्तार केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि विचारों, भावनाओं, संस्कृतियों और संबंधों तक फैला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में मनुष्य की क्षमताएं जैसे समान भावनाएं, समान जरूरतें, समान अधिकारों की मांग और समान जीवन के मूल्य सीमाओं को तोड़ने और एक वैश्विक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जहां पहले श्रोता साथियों सीमाएं देशों, भाषाओं और धर्मों और संस्कृतियों के आधार पर मनुष्य को अलग करती थी, वहीं आज ये क्षमताएं उन्हीं सीमाओं को धीरे धीरे समाप्त कर रही हैं।
2: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो काम पहले असंभव लगता था आज वो कैसे संभव हो गया? चाहे अंतरिक्ष में जाना हो, चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाना हो, या फिर अपने सपनों को हकीकत में बदलने की बात हो साथियों, मनुष्य हम देखते हैं कि लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ रहा है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों इसी यात्रा को हम समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीमाओं से असीम संभावनाओं तक की यात्रा को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक ऐसे प्राणी हैं जो केवल जीते नहीं हैं, बल्कि सोचते भी हैं, सीखते भी हैं और बदलते भी हैं।
1: जी हाँ,
2: और हम देखते हैं कि यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है जागृति जी।
1: बिल्कुल जी
2: हाँ, पहले मनुष्य की सीमाएं बहुत छोटी हुआ करती थी, वह केवल प्रकृति पर निर्भर रहता था, डर और अज्ञानता उसके जीवन का हिस्सा हुआ करती थी।
1: जी हाँ,
2: लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि, अनुभव और जिज्ञासा के बल पर इन सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया।
1: बिल्कुल,
2: और आज साथियों हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह उसी विस्तार का परिणाम है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन बहुत सरल था, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति में ही लगा रहता था।
2: बिल्कुल,
1: उस समय उसकी क्षमताएं सीमित थी और वह प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर नई नई खोजें की। उसने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया और धीरे धीरे सभ्यता का विकास किया। ये सब उसकी क्षमताओं के विस्तार का ही परिणाम था।
2: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है मनीषा और कशिश, वो मनुष्य की असीमित क्षमताओं का प्रमाण है।
2: जी जी,
1: एक समय था जब आकाश को छूना केवल एक कल्पना थी, लेकिन आज मनुष्य चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है।
2: बिल्कुल,
1: अंतरिक्ष यात्राएं, उपग्रहों का निर्माण और नई नई तकनीकों का विकास इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं है श्रोताओं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। पहले हम देखते थे जहां शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित थी, वहीं आज शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार बन चुकी है।
2: जी हाँ,
1: इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने ज्ञान को हर घर तक पहुंचा दिया। अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी को प्राप्त कर सकता है। ये भी मनुष्य की क्षमताओं के विस्तार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर मनुष्य के भीतर भावनाओं का एक समान संसार होता है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या संस्कृति से जुड़ा हो।
1: बिल्कुल,
0: खुशी, दुख, प्रेम, भय, आशा और संघर्ष जैसी भावनाएं सभी में समान रूप से पाई जाती हैं।
2: बिल्कुल,
0: यही भावनाएं मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है साथियों। हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए एक देश का व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति की खुशी और दुख को महसूस नहीं कर सकता। किसी आपदा, युद्ध का संकट के समय पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाती है।
2: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये सब यह दर्शाता है कि भावनाएं समानताएं सीमाओं को पार कर रही हैं और एक वैश्विक परिवार की भावनाओं को जन्म दे रही हैं।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। वहीं अगर हम देखें ज्ञान और शिक्षा के विस्तार के बारे में, तो दोस्तों पहले ज्ञान सीमित हुआ करता था, लेकिन आज इंटरनेट और शिक्षा ने हर व्यक्ति को अवसर दिया है।
0: बिल्कुल,
2: चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो, नई स्किल्स सीखने की बात हो, या फिर वैश्विक ज्ञान तक पहुंच साथियों।
0: जी हाँ
2: जागृति जी और मनीषा, अब कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान कर उसे विकसित कर सकता है।
1: बिल्कुल,
2: और जैसा कि आपने भी बताया था जागृति जी कि विज्ञान और तकनीक की भूमिका इसमें अहम रही है, क्योंकि विज्ञान ने मानव की सीमाओं को सबसे ज्यादा बदला है।
0: बिल्कुल,
2: हवाई जहाज ने दूरी खत्म कर दी है, मोबाइल ने संचार आसान बना दिया है। वहीं श्रोता साथियों, एआई और रोबोटिक्स ने तो काम करने का तरीका ही बदल दिया है।
1: जी बिल्कुल,
2: हम देख सकते हैं कि अब असंभव शब्द धीरे धीरे गायब हो रहा है और कह सकते हैं कि सब चीजें संभव हो रही हैं।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है मनुष्य की क्षमताओं सीमाओं का विस्तार करने लगी है, ये बातें ऐसे ही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें बहुत अच्छी चल रही है कार्यक्रम के माध्यम से
1: जी,
0: कि मनुष्य की क्षमताएं जो है वो सीमाओं का विस्तार कैसे कर रही हैं। गीत से पहले कुछ बातें रही थी महत्वपूर्ण हमारी आपसे कि मनुष्य की क्षमताओं का विकास हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि पहले के समय में ज्ञान और शिक्षा का विस्तार अलग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अलग है। साथ ही इसमें विज्ञान और तकनीक की भूमिका को लेकर भी हम बात कर रहे थे जागृति जी। यहीं अगर बात करें सपनों की उड़ान की, तो पहले लोग सीमित सोचते थे, आज युवा जो है वो बड़े सपने देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि स्टार्टअप शुरू करना, नई खोज करना और समाज में बदलाव लाना।
1: जी हाँ,
0: कह सकते हैं कि सपने ही वो ताकत है जो सीमाओं को तोड़ते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ विकास है तो वहीं कुछ चुनौतियाँ भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर चुनौतियों को लेकर बात करें, तो सबसे पहली बात आती है तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भरता की।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, लोग असल जिंदगी से दूर हो रहे हैं क्योंकि वह तकनीक पर निर्भर हैं। नैतिकता का संकट आ रहा है सामने, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग तकनीक का गलत उपयोग भी कर रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: जिसके कारण नुकसान ही नुकसान है। साथ ही मानसिक दबाव को लेकर बात करें, तो दोस्तों खुद को साबित करने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए जरूरी है कि हम संतुलन बनाकर रखें।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण की समस्या भी यह दिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं किसी एक देश तक सीमित नहीं है साथियों। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब पूरी दुनिया मिलकर काम करे। यह साझा जिम्मेदारी श्रोता साथियों यह साबित करती है कि मानवता की समानताएं हमें एकजुट करती हैं और सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं आज भी सीमाओं का विस्तार देने और एक वैश्विक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भावनाएं, जरूरतें, अधिकार और सपने, श्रोता साथियों ये सभी चीजें हर इंसान के समान होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: चाहे वह कहीं भी रहता हो, हम देखते हैं कि आज का युग एकता, सहयोग और आपसी समझ का युग है। सीमाएं अब केवल भौगोलिक रेखाएं बनकर नहीं रह गई साथियों, जबकि दिलों और विचारों की दूरी कम होती जा रही है। हमें समझना होगा साथियों कि हमारी विविधता हमारी ताकत है और हमारी समानताएं हमारी एकता का आधार। यदि हम इन दोनों में संतुलन के रूप को अपनाएं, तो हम एक बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि मनुष्य की क्षमताओं का विस्तार केवल भौतिक और तकनीक क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने नैतिक और मानवीय मूल्यों को मजबूत करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: श्रोताओं, यदि मनुष्य केवल अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग स्वार्थ के लिए करेगा, तो ये विकास विनाश का कारण बन सकता है कशिश। इसीलिए आवश्यकता है कि वो अपने विकास के साथ साथ समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। श्रोताओं, आज के युग में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी इस परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है।
0: बिल्कुल।
2: हमारे पास नई सोच है, नई ऊर्जा है और नए सपने हैं। यदि हम अपनी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करें, तो हम न केवल अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं, बल्कि पूरे समाज और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी जी जी।
2: इसीलिए साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं असीमित हैं और हम चाहे तो लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। ये विस्तार केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे आंतरिक विकास का भी प्रतीक है। लेकिन इस विकास के साथ साथ हमें अपने नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी को भी नहीं भूलना है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, हम देखते हैं कि क्षमताओं का विस्तार तभी सार्थक है जब वह मानवता के लिए हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हो और समाज के विकास में भी मदद करें, क्योंकि शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती है दोस्तों।
1: जी हाँ,
0: हम कहना चाहेंगे आपसे कि सबसे बड़ी सीमा हमारे अंदर ही होती है, वो है डर, आलस और आत्मसंदेह।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और मनीषा, जब हम इन्हें जी लेते हैं तो असली विस्तार शुरू हो जाता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं और ये एक बहुत सुंदर यात्रा है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमाओं को तोड़ना ही नहीं, सही दिशा में बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ कशिश, इन सब से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य की क्षमताएं आज भी सीमाओं का विस्तार कर रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें कमजोर बना रही हैं।
2: बिल्कुल।
1: जहाँ पहले सीमाएं हमें अलग करती थी साथियों, वहीं आज समानताएं हमें जोड़ रही हैं। हमें इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए और इसका उपयोग एक बेहतर समाज बनाने के लिए करना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान और विविधताओं को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि साथियों दुनिया एक सुंदर और संतुलित स्थान बन सके। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि मनुष्य की क्षमताएं ही वह शक्ति है जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकती है।
2: बिल्कुल।
1: और सीमाओं को केवल एक औपचारिक रेखा बनाकर छोड़ देती है साथियों।
2: बिल्कुल, हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों, मनुष्य की क्षमताएं सच में असीमित है, हम हर दिन अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ रहे हैं या एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन असली सफलता केवल ऊंचाइयों को छूने में नहीं बल्कि उस यात्रा में छिपी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को समझने में है। अगर ये विस्तार केवल स्वार्थ, प्रतियोगिता और अंधी दौड़ में बदल गया तो प्रगति नहीं बल्कि एक नई समस्या बन जाएगी।
0: जी बिल्कुल।
2: इसलिए श्रोताओं, जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का विस्तार केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित न रखें बल्कि अपने अंदर भी विस्तार करें, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में, अपने मानवीय मूल्यों में। क्योंकि जब मनुष्य अपने ज्ञान के साथ साथ अपने चरित्र को भी ऊंचा उठाता है तभी उसका विकास सच्चे अर्थों में पूर्ण होता है।
0: जी हाँ,
2: आज का युवा इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है, मनीषा और कशिश। अगर वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो वह न केवल अपनी सीमाओं को पार करेगा बल्कि समाज के लिए भी नई राह खोलेगा।
0: बिल्कुल।
2: हर छोटे प्रयास, हर नई सोच और हर सकारात्मक कदम इस विस्तार की एक नई शुरुआत बन सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
2: बिल्कुल।
1: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले युवा साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे दोस्तों, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। हर दिन श्रोता साथियों कुछ नया सीखिए, क्योंकि सफलता केवल ऊंचाइयां छूने में नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ने में है।
1: बिल्कुल। हाँ,
0: क्योंकि युवा साथियों आप में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत में राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
0: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में जिज्ञासा को दबाना क्यों नुकसानदायक है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि बचपन सवालों का समय होता है। ये वह उम्र होती है श्रोता साथियों जब बच्चा हर चीज को जानना समझना और परखना चाहता है।
1: जी जी,
0: यह क्या है, ऐसा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों है, पक्षी उड़ते कैसे हैं, यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है।
1: बिल्कुल,
0: और यही जिज्ञासा बच्चों के मानसिक विकास, रचनात्मकता और समझदारी की नींव रखती है। आज कार्यक्रम में इस विषय पर हम ढेर सारी बातों से श्रोता साथियों को जरूर अवगत करवाएंगे, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में जिज्ञासा को दबाना क्यों नुकसानदायक होता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, अगर बात करें तो जिज्ञासा बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये उसे खोजने, सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करती है अंजलि जी। लेकिन कई बार बड़े लोग बच्चों के सवालों को बेकार समझकर टाल देते हैं, डांट देते हैं या फिर उन्हें चुप करा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: कहते हैं कि इतने सवाल मत पूछा करो, चुप रहा करो, बड़ों के बीच में मत बोलो। साथियों, ऐसे कुछ बातें होती हैं जो हम अक्सर अपने बच्चों से कर देते हैं, और जो ये बातें होती हैं वो बच्चे के मन में एक संदेश देती है कि सवाल पूछना गलत है। अंजलि जी, यहीं से समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जब जिज्ञासा दबती है तो केवल सवाल नहीं रुकते बल्कि सीखने की प्रक्रिया भी कमजोर होने लगती है।
1: जी हाँ,
0: बच्चा धीरे धीरे कम बोलता है, कम पूछता है और कम समझने लगता है। इसलिए बच्चों में जिज्ञासा को दबाना केवल एक आदत को रोकना नहीं है बल्कि उनके विकास की दिशा को रोकने जैसा काम है।
1: बिल्कुल कशिश, यही अब बात आती है कशिश की जिज्ञासा आखिरकार क्या है। तो श्रोता साथियों, जिज्ञासा जानने की इच्छा है, नई चीजें समझने की इच्छा है, कारण जानने की इच्छा, खोजने और सीखने की चाह है। यही जिज्ञासा बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं श्रोता साथियों बल्कि जीवन सीखने योग्य बनाती है। कहना चाहेंगे कि जिज्ञासा बच्चों के विकास में बहुत जरूरी होती है। ये क्यों जरूरी है? तो श्रोता साथियों, सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है। बच्चा जब सवाल पूछता है तभी सीखता है कि अगर सवाल ही नहीं होंगे तो सीख कैसे होगी।
0: बिल्कुल,
1: हर खोज एक सवाल से शुरू होती है। सोच की क्षमता बढ़ती है, यानी कि कशिश जिज्ञासु बच्चा सिर्फ जानकारी नहीं लेता बस सोचता भी है, क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो तो। यहीं से आलोचनात्मक सोच की शुरुआत होती है। जिज्ञासा कल्पना को जन्म देती है, जो बच्चा पूछता है वही नए विचार सोचता है। कहना चाहेंगे कशिश कि इसी के साथ बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब बच्चों के सवाल को महत्व मिलता है तो उसे लगता है कि उसकी बात मायने रखती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें कि जिज्ञासा दबाने से क्या नुकसान होते हैं, तो हम देखते हैं कि इससे बच्चों की सीखने की रुचि कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर श्रोता साथियों, हम बच्चे को बार बार चुप कराते हैं तो वह सवाल पूछना ही बंद कर देता है।
1: जी हाँ,
0: धीरे धीरे उसके अंदर सीखने का उत्साह कम हो जाता है और वो नई नई चीजों को सीखने में कम रुचि लेने लगता है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही बच्चों में डर भी पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है अंजलि जी कि अगर उन्होंने सवाल पूछा तो उन्हें डांट पड़ सकती है।
1: जी जी,
0: या फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि सवाल पूछना ही गलत है। दोस्तों, ये डर आगे चलकर व्यक्तित्व को कमजोर कर सकता है बच्चों के, और साथ ही बच्चों की रचनात्मक शक्ति भी इससे रुक जाती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब बच्चों को सोचने और पूछने नहीं दिया जाता तो उनकी कल्पना सीमित हो जाती है, जिससे वे रचनात्मक चीजों को महत्व नहीं देते।
1: जी हाँ,
0: साथ ही बच्चा महसूस करता है कि उसकी बातें महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे उसका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है।
1: बिल्कुल, यही बात आती है कशिश अब कि घर परिवार कैसे दबा देता है बच्चों की जिज्ञासा को। तो हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जब सवाल करते हैं तो अक्सर घर परिवार के सदस्य ही ये बोल देते हैं कि इतने सवाल मत पूछो, चुप रहो, बड़ों को ज्यादा मत टोको, ये तुम्हारी समझ की बात नहीं। ऐसी ही बातें अनजाने में जिज्ञासा को रोक देती है। इसी के साथ अगर स्कूल में सिर्फ रटने पर जोर हो और सवाल पर नहीं, तो बच्चे जिज्ञासु कम डरपोक ज्यादा बनते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बात आती है कि इन सारी चीजों के बीच जिज्ञासा को कैसे बढ़ाया जाए। तो जब भी बच्चे सवाल पूछे तो उन्हें सवाल पूछने देना है और उनके सवालों को महत्व देना है।
0: जी हाँ,
1: जवाब जब हमें नहीं पता हो तो हमें उन्हें कहना है कि चलो मिलकर पता करते हैं। हमें बच्चों को डांटना नहीं है, दिशा देनी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हर सवाल मजाक नहीं होता है, प्रयोग करने देना है, यानी कि बच्चों को किसी सवाल के जवाब के लिए खोज करने देना, देखने देना और समझने देना है। प्रकृति जिज्ञासा की सबसे बड़ी किताब होती है, इसलिए हमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ना है। आज का जिज्ञासु बच्चा ही कशिश कल अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, आविष्कारक बन सकता है और जागरूक नागरिक भी बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जिज्ञासु बच्चे सवाल पूछते हैं, सवाल बदलाव लाते हैं और बदलाव समाज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कहना चाहेंगे कि बच्चों का सवाल पूछना और उनकी बातों का जवाब देना हमारा एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए हमें बच्चों की जिज्ञासा को कभी भी दबाना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दोस्तों से बात कर ही रहे हैं तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को कशिश जाने लिया है, अब बात आती है कि बच्चों के सवालों को रोकना नहीं है, उन्हें दिशा देना है, क्योंकि हर बड़ा विचार कभी एक छोटे से सवाल से ही शुरू हुआ था।
1: बिल्कुल।
0: अगर एक कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को इस बात को समझाना चाहें तो श्रोता साथियों बताना चाहूंगी कि एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव कशिश बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था।
1: बिल्कुल।
0: हर बात पर सवाल पूछता था। सुबह सूरज निकलता तो पूछता कि सूरज रोज पूरब से ही क्यों निकलता। बारिश होती तो पूछता कि बादल पानी कैसे बरसाते हैं। खेत में किसान को काम करते देखता तो पूछता कि बीज मिट्टी में दबने से पौधे कैसे बन जाते हैं। उसकी माँ कभी कभी मुस्कुरा कर जवाब देती, लेकिन कई बार काम की जल्दी में कह देती, इतने सवाल मत पूछा करो।
1: बिल्कुल।
0: पिता खेत से लौटते तो आरव उनके पीछे पीछे चलता और पूछता, मिट्टी में इतनी खुशबू क्यों आती है। पिता हंसकर डाल देते। स्कूल में भी यही सब हाल था। शिक्षक पढ़ाते तो आरव हाथ उठाकर पूछ देता, अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम ज्यादा पेड़ क्यों नहीं लगाते।
1: बिल्कुल।
0: कई बार साथी जो बच्चे होते वो भी हंसते और कहते, तू बहुत सवाल करता है। धीरे धीरे कशिश आरव को लगने लगा कि शायद सवाल पूछना गलत है। उसने अपने सवाल को मन में ही रखना शुरू कर दिया। अब वह चुप रहने लगा। जो बच्चा हर बात जानना चाहता था वह अब सिर्फ सुनता था, पूछता नहीं था। एक दिन गांव में एक नए विज्ञान शिक्षक आए, शेखर सर। उन्होंने पहली ही कक्षा में कहा, जिसके मन में सवाल है वही सबसे ज्यादा सीख सकता है। यह सुनकर आरव चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात सुन ली हो। अगले दिन शेखर सर बच्चों को पेड़ के नीचे ले गए और बोले, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम सवाल पूछो। बच्चे चुप रहे, लेकिन आरव के मन में कशिश कई सारी तूफाने चल रही थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सर बीज को कैसे पता चलता है कि उसे ऊपर उगना है। शेखर सर मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा सवाल है, यही तो विज्ञान है। उसी दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि उसके सवाल बोझ नहीं ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: अब हर रोज नए सवाल पूछता, कभी खेत के, कभी आकाश के, कभी पानी के, तो कभी पक्षियों के।
1: जी हाँ।
0: शेखर सर हर सवाल का जवाब देते और कभी कभी कहते, इसका जवाब हम मिलकर खोजेंगे। धीरे धीरे दूसरे बच्चे भी सवाल पूछने लगे। कक्षा बदलने लगी। अब पढ़ाई सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रही कशिश। एक दिन शेखर सर बच्चों को गांव के तालाब पर ले गए। वहाँ पानी कम हो गया था। उन्होंने पूछा, बताओ पानी क्यों कम हो रहा है। बच्चे चुप थे। आरव बोला, शायद क्योंकि हम पानी नहीं बचाते। फिर उसने पूछा, अगर बारिश का पानी रोक ले तो क्या तालाब भर सकता है। बच्चों, यह सवाल गांव के बुजुर्गों तक पहुंचा। पंचायत में चर्चा हुई। लोगों ने बारिश का पानी रोकने की योजनाएं बनाई। अगले साल तालाब पहले से ज्यादा भर गया। गांव में लोग कहने लगे, यह सब उस बच्चे के सवाल से शुरू हुआ। आरव अब गांव में सवालों वाला बच्चा कहलाने लगा। कुछ साल बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। आरव ने एक मॉडल बनाया कशिश, गांव में वर्षा जल संरक्षण।
1: बिल्कुल।
0: जज ने पूछा, तुम्हें यह विचार कैसे आया। आरव मुस्कुराया और बोला, एक सवाल से। उसे पहला पुरस्कार मिला। जब वह घर आया तो उसकी माँ ने कहा, हमें लगता था कि तुम बहुत सवाल करते हो, लेकिन अब समझ में आया कि सवाल ही तुम्हारी ताकत है। पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जिस बच्चे को हम चुप कराते थे उसी ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरव ने धीरे से कहा, अगर उसी दिन शेखर सर मुझे सवाल पूछने से न रुकते तो शायद मैं भी चुप ही रहता। समय बीता। आरव बड़ा होकर वैज्ञानिक बना। जब भी बच्चों से मिलता एक बात जरूर कहता, सवाल पूछो, क्योंकि हर खोज, हर बदलाव और हर नई शुरुआत एक सवाल से ही जन्म लेती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, जिस बच्चे की जिज्ञासा को दबा दिया जाता है उसकी उड़ान रुक सकती है, लेकिन जिसे सवाल पूछने की आजादी मिलती है वह सिर्फ खुद नहीं बढ़ता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से ये कह सकते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा को केवल सवाल पूछने की आदत समझना दोस्तों उसकी गहराई को कम करके आंकने जैसा है। वास्तव में जिज्ञासा वह शक्ति है जो बच्चों को देखने के साथ साथ समझने, तर्क करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की क्षमता देती है। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि यही वह गुण है हमारे बच्चों का जो न बच्चों को केवल जानकारी लेने वाला बनाता है बल्कि ज्ञान खोजने वाला भी बनाता है। इसलिए जब जिज्ञासा को दबाया जाता है तो नुकसान केवल साथियों एक व्यवहार का नहीं होता बल्कि बच्चे की सोच, व्यक्तित्व और संभावनाओं का भी होता है।
0: जी हाँ,
1: एक ऐसा बच्चा जिसे बार बार चुप कराया जाता है अंजलि जी, धीरे धीरे वह सिर्फ सवाल पूछना नहीं छोड़ता बल्कि अपनी सोच पर भरोसा करना भी कम कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: वह केवल निर्देश मानने वाला बन सकता है, खोजने वाला नहीं साथियों। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जिज्ञासा अनुशासन की दुश्मन नहीं बल्कि समझ के साथी है। बच्चों के सवालों से परेशान होने के बजाय साथियों, अगर उन्हें संवाद का अवसर बनाया जाए तो वही सवाल सीखने का सबसे सुंदर माध्यम बन सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर बहुत अच्छी बातें रही हैं। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिलीप जी,

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी समाप्त होता है। अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चों के सवालों से बचिए मत, उन्हें अपनाइए साथियों, क्योंकि जिज्ञासा को दबाना विकास को रोकने जैसा है।
1: बिल्कुल।
0: और जिज्ञासा को बढ़ाना भविष्य को मजबूत बनाना है। इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय, यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाइन बोनो अनस की थाती हमें कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़ा सूटा। आशा कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी अब तक की मधुमक्खी पालन ने लेने से बातें रही है ये आपने गमी होगा। तो आपने मारो आज कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरे अणपता माते।
1: हवे भाइन बोनो अमारू पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा केम्पस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारू पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बलदे आप मने फोन करी शको अमारा फोन नंबर माते। अमारू फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाई बोनो फेरी वलंगा अनस कार्यक्रम में अनस टेम माते एक नाविशने हाते तारुदी
1: राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम, राम।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं खजूर और बांस का महत्व आदिवासी संस्कृति में।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम देखते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को ऐसे ऐसे उपहार दिए हैं जो केवल भोजन या उपयोग की वस्तु ही नहीं है, बल्कि जीवन को सरल बनाने वाली चीजें हैं, सुंदर बनाने वाली चीजें हैं और समृद्ध बनाने का माध्यम भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि खजूर और बांस ऐसे ही दो अनमोल प्राकृतिक उपहार है। एक ओर खजूर अपने पौष्टिक गुणों और औषधीय महत्व के कारण प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर बांस अपनी मजबूती, उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण में भूमिका के कारण विशेष स्थान रखता है।
0: बिल्कुल,
1: दोनों ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संस्कृति, रोजगार और स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग में जब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है, तब खजूर और बांस का महत्व और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातचीत भी चल रही थी और विषय भी आपको बताया था कि आज का विषय है खजूर और बांस का महत्व। जैसे कि अंजलि, कहा गया है कि प्रकृति का हर उपहार मानव जीवन का आधार है और उसमें खजूर और बांस भी आते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि आदिवासी संस्कृति प्रकृति के बहुत करीब मानी जाती है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन आदिवासी जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज केवल प्रकृति का उपयोग नहीं करता बल्कि उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान भी देता है। यही कारण है श्रोता साथियों कि उनके जीवन में हर पेड़, हर पौधा और हर प्राकृतिक वस्तु का एक विशेष महत्व होता है।
0: बिल्कुल,
1: इनमें खजूर और बांस का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि खजूर और बांस केवल उपयोगी वस्तुएं नहीं है बल्कि आदिवासी जीवन, संस्कृति, परंपरा, आजीविका और त्योहारों का सामाजिक व्यवस्था का आधार है। इनसे भोजन मिलता है, घर बनाते हैं, रोजगार मिलता है, कला विकसित होती है और जीवन की अनेक आवश्यकताएं पूरी होती हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आदिवासी समाज की सादगी, मेहनत और प्रकृति से जुड़ाव को समझना हो तो हमें खजूर और बांस के महत्व को भी समझना जरूरी है। आज आधुनिकता के दौर में जब पारंपरिक जीवन शैली बदल रही है तब भी कई आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। खजूर और बांस आज भी उनके जीवन में वही सम्मान रखते हैं जो वर्षों पहले रखते थे।
0: जी हाँ,
1: केवल पेड़ या घास नहीं है बल्कि आदिवासी पहचान का प्रतीक है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि खजूर एक मीठा और पौष्टिक फल है जो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के कई राज्यों में खजूर की खेती भी की जाती है और ये फल बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि खजूर में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन और कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं।
1: जी हाँ,
0: खजूर का पेड़ भी बहुत उपयोगी होता है और इसकी पत्तियों से चटाइयां, टोकरियां और सजावटी वस्तु बनाई जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसके तने का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है श्रोताओं। और इस प्रकार खजूर केवल एक फल नहीं है बल्कि अनेक प्रकार से मानव जीवन के काम आने वाला वृक्ष है। कहा गया है अंजलि कि खजूर का मीठा स्वाद स्वास्थ्य और शक्ति का प्रसाद है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई आदिवासी क्षेत्रों में खजूर के पेड़ों से रस निकाला जाता है। इस रस का उपयोग पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। सुबह का ताजा रस स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। कुछ समुदायों में यह रस सामाजिक मेल जोल और त्योहारों का हिस्सा भी होता है। लोग मिलकर रस निकालते हैं और सामूहिक रूप से उसका आनंद लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खजूर के फल, पत्ते और रस से आदिवासी परिवारों को आय प्राप्त होती है। कई लोग खजूर बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण बाजारों में खजूर की अच्छी मांग रहती है। खजूर से बने उत्पाद के कारण महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। वे खजूर सुखाने, पैक करने और बेचने का काम करती हैं।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि आदिवासी समाज पारंपरिक औषधियों का उपयोग करता है। खजूर को कमजोरी दूर करने और शरीर को ताकत देने वाला माना जाता है। कई लोग इसे प्राकृतिक दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि खजूर की खेती किसानों के लिए आय का अच्छा स्रोत बनती जा रही है। इसकी मांग देश और विदेश दोनों जगह बढ़ रही है और हम देखते हैं कि खजूर से जैम, मिठाई, सिरप और अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिससे छोटे उद्योग को भी रोजगार मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खजूर आधारित उद्योग लोगों को स्वरोजगार प्रदान करते हैं। महिलाएं भी इससे जुड़े छोटे व्यवसायों में भाग लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खजूर केवल पोषण ही नहीं देता बल्कि आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि खजूर की खेती को अपनाएंगे तो रोजगार और समृद्धि अपने आप ही बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि आदिवासी जीवन में खजूर का क्या महत्व है। आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे बांस के महत्व के बारे में। लेकिन क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए कि खजूर का क्या महत्व है और किस तरीके से यह औषधीय तौर पर भी प्रयोग में आता है। यहीं जागृति जी बात करें बांस की, तो श्रोता साथियों, बांस को गरीबों की लकड़ी भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और अनेक उपयोगों में आता है। भारत में कई आदिवासी क्षेत्र हैं जहां इसका विशेष महत्व है। इसे घर बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। श्रोता साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में बांस से घर बनाए जाते हैं। बांस हल्का और मजबूत और टिकाऊ होता है। इससे दीवारें, छत और बाड़ बनाई जाती है। बांस के घर प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं और गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में आरामदायक रहते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हमने खजूर के बारे में बात की, यहाँ अगर जैसे कि बांस के बारे में बता रहे हैं, तो बांस को गरीबों की लकड़ी भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में प्रकृति का सबसे बहुमूल्य संसाधन है। बांस एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो कम समय में तैयार हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी मजबूती और लचीलापन है। हम देखते हैं कि पर्यावरण का सच्चा मित्र माना जाता है बांस। ये वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती देती है जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हमने अभी कहा कि बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए वनों पर दबाव कम करने में मदद करता है। यदि लकड़ी की जगह बांस का अधिक उपयोग किया जाए तो पेड़ की कटाई कम हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: आज हम देख रहे हैं अंजलि कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बांस को एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। श्रोताओं, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में बांस का महत्व और अधिक बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि आदिवासी लोक संगीत में बांस से बने वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। बांसुरी, नगाड़ों के हिस्से और अन्य वाद्य यंत्र बांस से ही बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: त्योहारों और नृत्यों में भी इन वाद्य यंत्रों की धुन आदिवासी संस्कृति की पहचान बनती है।

0: हमारे श्रोता साथियों को और भी बताएं, तो गांव में बांस का जीवन से गहरा संबंध है।
1: बिल्कुल,
0: किसान खेतों में सहारे के लिए बांस का उपयोग करते हैं। ग्रामीण महिलाएं बांस से टोकरियां, चटाई और हस्तशिल्प वस्तु बनाकर आयोजित करती है। हम देख सकते हैं कि हस्तकला भारतीय संस्कृति की पहचान है। कई कलाकार बांस से सुंदर सजावटी वस्तु बनाते हैं जिनकी मांग देश विदेश में होती है। अंजलि, इससे ग्रामीण कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। श्रोताओं, आज हम देखते हैं कि सरकार भी बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। आज का समय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का समय है। प्लास्टिक और रासायनिक वस्तुओं के बढ़ते उपयोग ने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है अंजलि, ऐसे में बांस और खजूर जैसे प्राकृतिक संसाधन हमें टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, बांस से बने उत्पाद पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, वहीं खजूर जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। यदि हम इनका सही उपयोग करें तो मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति, जब हम देखते हैं कि आदिवासी जो समाज है वो हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे जिया जाता है। वे जरूरत के अनुसार संसाधनों का उपयोग करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ श्रोता साथी बताना चाहेंगे कि खजूर और बांस का महत्व केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं है बल्कि यह सादगी, मेहनत, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण प्रेम का प्रतीक है। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है तब आदिवासी जीवन शैली और उनकी परंपराएं समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आदिवासी संस्कृति में खजूर और बांस का महत्व बहुत ही गहरा और व्यापक है। ये केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता के आधार है। खजूर आदिवासी समाज को भोजन, पोषण और आय प्रदान करते हैं जबकि बांस उनके घर, कला, संगीत और रोजगार का प्रमुख साधन बनता है। इन दोनों ने आदिवासी जीवन को सरल, संतुलित और प्रकृति के करीब बनाए रखा है। आदिवासी समुदाय ने हमेशा प्रकृति का सम्मान किया और उसे उतना ही लिया जितना आवश्यकता थी। यही सोच जागृति जी आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा है।
0: बिल्कुल,
1: आधुनिकता के इस दौर में जरूरत है श्रोता साथियों कि हम आदिवासी संस्कृति और उनके पारंपरिक

0: तब तक मानव जीवन में संतुलन और संवेदनशीलता बनी रहेगी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि खजूर और बांस दोनों हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। खजूर कठिन परिस्थितियों में भी मीठा फल देता है, जबकि बांस हमें विनम्रता और लचीलापन सिखाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, तेज हवा आने पर बांस झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और

0: बनाए रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ये दोनों प्रकृति के ऐसे शिक्षक हैं जो बिना बोले जीवन का ज्ञान देते हैं। यदि मनुष्य प्रकृति से सीखना शुरू कर दे तो श्रोताओं उसका जीवन और अधिक संतुलित और सफल बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कहा भी गया है कि जो प्रकृति से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।

0: रोजगार और ग्रामीण विकास का आधार है।
1: जी हाँ,
0: ये दोनों हमें प्रकृति के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता का एहसास कराते हैं। आज आवश्यकता इस बात की श्रोताओं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, उनका संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों को भी इनके महत्व के बारे में जागरूक करें। यदि हम प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को बचाकर रखेंगे अंजलि, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि आदिवासी संस्कृति में बांस और खजूर का क्या महत्व है और किस तरीके से इसके ढेर सारे फायदे हमें हमारी प्रकृति पर देखने को मिलते हैं। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से बांस और खजूर के महत्व को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी आशा के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों, प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हो आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM जी, और हाँ? आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में।
0: जी जी
1: साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: जी बिल्कुल कशिश,
1: और वो है मनीषा, गुस्सा, तनाव और शरीर का संबंध। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली में भागदौड़, प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियां और अनिश्चितता इतनी बढ़ चुकी है कि तनाव और गुस्सा अब आम बात बन चुके हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये भावनाएं केवल मन तक सीमित नहीं रहती बल्कि हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि गुस्सा और तनाव केवल मानसिक स्थिति नहीं है बल्कि ये शरीर के अंदर कई जैविक प्रक्रियाओं को बदल देते हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि दोस्तों, इन्हें समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं।
0: जी जी,
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि गुस्सा और तनाव हमारे शरीर पर कैसे असर डालते हैं।
0: जी जी,
1: इनके बीच संबंध क्या है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गुस्सा, तनाव और शरीर के संबंध को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर कशिश हम बात करें गुस्सा क्या है, तो हम देखते हैं कि गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है साथियों, जो तब उत्पन्न होती है जब हमें अन्याय, असंतोष या निराशा का अनुभव होता है। यह हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया के रूप में आता है साथियों। थोड़ा बहुत गुस्सा सामान्य है और कभी कभी यह हमें अपनी बात रखने की ताकत भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, जब गुस्सा बार बार और बहुत अधिक आने लगे तो यह हमारे शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर इसी के आगे हम बात करें मनीषा तनाव की, तो देखते हैं कि तनाव वह स्थिति है जब हम मानसिक या शारीरिक दबाव महसूस करते हैं।
0: जी जी
1: साथियों, यह दबाव किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि काम का बोझ, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक चिंता या फिर भविष्य की असुरक्षा।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आमतौर पर तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव।
0: जी हाँ
1: साथियों, अगर सकारात्मक तनाव की बात करें तो जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वो है सकारात्मक तनाव, और जो हमें कमजोर और बीमार बना देता है
0: जी
1: वह है नकारात्मक तनाव। श्रोता साथियों, गुस्सा और तनाव एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं।
0: जी हाँ
1: जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सहनशीलता कम हो जाती है और हम जल्दी गुस्सा करने लगते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: वहीं अगर बार बार गुस्सा करने से हमारा तनाव और भी बढ़ जाता है साथियों, यानी कि ये एक तरीके का सर्कल है, तनाव, गुस्सा और अधिक तनाव, फिर गुस्सा। दोस्तों, इस चक्र को समय पर नहीं अगर तोड़ा जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम बात करें कि गुस्सा और तनाव का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, हम देखते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर के कुछ हार्मोन होते हैं जो कि श्रोता साथियों बढ़ जाते हैं। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लगातार ऐसे ही होने से हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, हार्ट अटैक का खतरा भी कशिश बढ़ सकता है, दिल की बीमारियां बढ़ जाती है साथियों। इससे हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं कि तनाव और गुस्सा हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, श्रोता साथी इससे याददाश्त कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता हमारी घट जाती है और नकारात्मक विचार भी बढ़ने लगते हैं।
1: बिल्कुल
0: कोशिश, लंबे समय तक तनाव में रहने से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्या भी हो सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें पाचन तंत्र की, तो साथियों तनाव का सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: इससे गैस, एसिडिटी, भूख न लगना या ज्यादा खाना, पेट दर्द जैसी कई समस्याएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कई बार तो अल्सर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमें तनाव नहीं लेना है। अगर बात करें प्रतिरक्षा प्रणाली की, तो दोस्तों तनाव और गुस्सा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं।
0: जी हाँ कशिश,
1: इससे बार बार बीमार पड़ना, संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ अगर हम बात करें कि नींद को प्रभावित कैसे करती है, तो श्रोता साथियों तनाव और गुस्सा हमारी नींद को भी खराब कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमें नींद नहीं आती है, बार बार नींद टूट जाती है हमारी, सुबह थकान होने लगती है। श्रोता साथियों, ये समस्या हमारे लिए आम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ अगर बात करें कि मांसपेशी और शरीर दर्द की, तो हम देखते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं कशिश, तो शरीर की मांसपेशियां तनाव ग्रस्त हो जाती हैं। गर्दन और कंधे में दर्द होता है श्रोता साथियों, सिर दर्द होता है और पीठ दर्द जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से गुस्सा, तनाव जो है उसके क्या हमारे शरीर पर प्रभाव होते हैं।
0: जी जी,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है गीत से पहले भी,
1: जी जी,
0: गुस्सा तनाव का शरीर से क्या संबंध है और क्या शरीर पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहीं अगर बात करें श्रोता साथियों कि गुस्सा और तनाव जो है उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो गुस्सा और तनाव के कई कारण होते हैं मनीषा, जैसे कि काम का दबाव, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद, सोशल मीडिया का प्रभाव और नींद की कमी और साथ ही अस्वस्थ जीवन शैली।
1: जी जी
0: दोस्तों, हम देखते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से हमारे शरीर में गुस्सा और तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी जो दिनचर्याएं हैं उन पर भी असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण अक्सर हम बीमार रहते हैं, संक्रमण से पीड़ित रहते हैं और हमें बार बार कह सकते हैं कि डॉक्टर या फिर अस्पताल के चक्कर लगाने होते हैं।
1: जी हाँ कशिश, ये तो हमने बातें की गुस्सा और तनाव के कारणों की। यही अगर हम बात करें गुस्सा और तनाव को हम नियंत्रित कैसे करें,
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों सबसे पहले हमें गहरी सांस लेनी है। जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लीजिए, यह तुरंत शरीर को शांत करता है कशिश।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को रोजाना योग और ध्यान करना चाहिए, जिससे इनका मन भी शांत रहेगा और तनाव भी कम होगा।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हमारे श्रोता साथियों को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर में कशिश खुशी के हार्मोन होते हैं जो कि बढ़ते हैं और तनाव को भी ये कम करते हैं। इसी के साथ ही श्रोता साथियों, काम को सही तरीके से बांटें और समय का सही उपयोग करें और अपने काम को सही समय पर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा तनाव भी कम होगा और हम स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें सकारात्मक सोच की,
1: जी,
0: तो दोस्तों नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच को बना रखें।
1: जी हाँ कशिश,
0: आपको पर्याप्त नींद लेने की भी जरूरत है श्रोता साथियों, क्योंकि कई बार अनिंद्रा की समस्या जब हो जाती है या फिर हम नींद समय पर नहीं लेते हैं, तो इसके कारण भी कह सकते हैं कि समस्याएं हैं वो हमारे शरीर पर होती है।
1: जी जी,
0: ऐसे में दोस्तों आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी के साथ अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आप जरूर साझा करें। इससे श्रोता साथियों, अगर आप किसी समस्या को लेकर चिंतित हैं या तनाव में हैं, तो अपने किसी दोस्त से अगर आप इस बात को या फिर इस तनाव से जो जिस चीज का आपको तनाव है उसको लेकर अगर आप उनसे कुछ बातें साझा करेंगे, तो इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आपको संतुष्टि भी मिलेगी।
1: जी जी
0: दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि गुस्सा और तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं है।
1: जी जी,
0: अगर हम इन्हें समय रहते नियंत्रित कर लें मनीषा, तो हम एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में दोस्तों याद रखें कि शांत मन ही स्वस्थ शरीर की कुंजी है। गुस्सा कम, मुस्कान ज्यादा, तनाव कम, संतुलन ज्यादा।
1: जी हाँ कशिश, तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कह सकते हैं कि गुस्सा और तनाव केवल मानसिक समस्या नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ये हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं साथियों। ये धीरे धीरे हमारी सेहत को अंदर से कमजोर कर देते हैं। कशिश, हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। हमें ये समझना होगा साथियों कि हर समस्या का समाधान गुस्से से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और जीवन शैली को संतुलित रखें कशिश, तो हम गुस्से और तनाव को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही खुशहाल जीवन की पहचान होते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ऐसे में कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, वैसे तो वर्तमान में गुस्सा और तनाव आम बात हो चुकी है,
1: जी जी,
0: लेकिन इसे हल्के में लेना हमारे लिए सही बात नहीं है। आज जैसा कि हमने कार्यक्रम के माध्यम से गुस्सा, तनाव और शरीर के गहरे संबंध को समझा है साथियों,
1: जी जी,
0: इन सभी बातों से ये बात तो साफ हो जाती है कि केवल भावनाएं नहीं है बल्कि हमारे पूरे जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं।
1: जी जी,
0: ऐसे में याद रखिए साथियों कि गुस्सा एक चिंगारी है जो अगर संभाली न जाए तो आग बन जाती है। तनाव एक बोझ है जिसे अगर समय पर उतारा न जाए तो ये हमें अंदर से कमजोर कर देती है।
1: जी जी,
0: लेकिन अच्छी बात तो यहाँ पर ये है मनीषा कि इन दोनों पर हमारा नियंत्रण संभव है। छोटी समझदारी, थोड़ी सी सजगता और थोड़ी सी सकारात्मक सोच श्रोता साथियों हमें इनसे बचा सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सही प्रतिक्रिया ही समाधान है।
1: जी जी,
0: अपने मन को शांत रखें साथियों, अपने शरीर का ध्यान रखें क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी जी।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में, जहाँ साथियों हम बात करते हैं हमारे भविष्य की, हमारे सपनों की और हमारे जीवन से जुड़े हकीकत की। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ रहा है। साथियों, आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। बात कर रहे हैं हार से जीत का सफर। दोस्तों, हार ये शब्द सुनते ही हमारा दिल छोटा सा हो जाता है, या फिर कहूँ तो टूट सा जाता है और हौसला भी डगमगा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में हार अंत होती है या फिर वही हार हमें जीत की ओर ले जाने का पहला कदम होती है? आज हम कार्यक्रम के माध्यम से इसी सच्चाई को समझेंगे कि हार आखिर है क्या, हार हमें कमजोर बनाती है या हमें आगे बढ़ाती है। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, क्योंकि यहाँ पर हम पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर हमारी बातचीत की फिर से शुरुआत करेंगे।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है गीत से पहले, और विषय के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हार से जीत के सफर को लेकर। तो श्रोता साथियों, पहले जान लेते हैं कि हार आखिर होती क्या है। दोस्तों, हार का मतलब सिर्फ हार जाना नहीं होता, बल्कि ये एक संकेत होता है कि अभी हमें और कुछ बड़ा सीखना है या फिर खुद को बेहतर बनाना है। अगर जिंदगी में दोस्तों कभी हार न मिले तो जीत की कीमत भी हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हार एक ऐसी चीज है जो अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो उस समय तो उसका मूल्य उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब वह उस हार को एक अवसर के रूप में देखता है तो उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मिल जाता है साथियों। और यही वास्तविक सत्य है, क्योंकि हार व्यक्ति को गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। बस हम पे ये निर्भर करता है साथियों कि हम हार को किस रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो हार को डर के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम आपको बताएं तो बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि अगर वो अपने जीवन में असफल हो गए तो क्या होगा, और कुछ लोगों को तो लोगों की बातों का भी डर रहता है और खुद पर भरोसा भी नहीं रहता। लेकिन दोस्तों ऐसे में हमें ये याद रखना है कि जो हार से डरता है वह कभी जीत नहीं सकता। हमें दोस्तों हार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार को स्वीकार करेंगे तो हो सकता है वो हार हमारे जीवन में एक नया रास्ता लेकर आई हो सफलता का। इसलिए आपको कभी भी हार से निराश न होकर हार को स्वीकार करना चाहिए साथियों, क्योंकि हार को स्वीकार करना सबसे पहला कदम हो सकता है सफलता की ओर बढ़ने का। क्योंकि दोस्तों यह मानना हम हार गए ये कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत होती है, इससे हम आगे बढ़ पाते हैं। साथ ही हमें खुद का विश्लेषण भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हार के पीछे भी ढेर सारे कारण होते हैं, जैसे कि मेहनत की कमी, गलत रणनीति, ध्यान भटकना। दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से भी कई बार हमें असफलता मिलती है और हम हार जाते हैं। इसलिए अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हार को तो हमें स्वीकार करना ही है, लेकिन उसके बाद हमें ये पता करना है कि दोस्तों हम हार क्यों गए, यानी कि ऐसी क्या कमी रह गई आपकी मेहनत में जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों आपको बताऊं तो हिम्मत बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हार के बाद सबसे जरूरी चीज होती है हिम्मत की। ऐसे में आप याद रखिए कि हार आपको रोकती नहीं है बल्कि आपको मजबूत बनाती है साथियों। इसलिए हार से डरने के बजाय हार को एक नई उम्मीद की तरह आप स्वीकार करें। इससे श्रोता साथियों आपको अंदर से हिम्मत आएगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ने के लिए तत्पर रह जाएंगे साथियों। तो जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है और हम हार से जीत के सफर की ओर बढ़ रहे हैं साथियों, तो ये बातें और भी आगे जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो तो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि हमें हार को हराना कैसे है, जैसा कि हमने जाना था कि हमें हार को स्वीकार करना है साथियों, हिम्मत बना के रखनी है और हमें हार जाने के कारणों के बारे में भी जानना है कि हमारी कमी कहाँ पर रह रही है। इसी के बाद दोस्तों, अगर बात करूं तो आप अगर सफलता चाहते हैं और जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सही रणनीति अगर नहीं बनी हुई होती है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लक्ष्य की ओर बढ़ना जानते हैं लेकिन जब वह लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने सही योजना नहीं बनाई हुई होती है, जिसके कारण भी असफलता मिलती है और वो लोग असफलता मिलने के बाद निराश हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी सफलता की ओर बढ़ने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किया है उसके छोटे छोटे कदम आपको बढ़ाने हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना है साथियों, क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होगा, हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस संघर्ष से हम डर जाएंगे दोस्तों तो हम सफलता की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एकदम बड़ी जीत की उम्मीद आप न करें, बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। साथ ही लगातार प्रयास करने की आदत को भी अपनाएं दोस्तों, क्योंकि कई बार कुछ लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन अगर उन्हें असफलता मिली तो वो निराश हो जाते हैं। इसलिए सफलता एक बार में कभी नहीं मिलेगी दोस्तों, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी और अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन साथियों आप अपनी सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंच ही जाएंगे। इसलिए साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि असली जीत होती क्या है। दोस्तों, असली जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी या फिर इनाम पाना नहीं होता, बल्कि असली जीत तो यह है कि हमारा खुद पर विश्वास है, हर हार के बाद भी हम फिर से उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ते रहना हमने सीखा है। दोस्तों, ये जो चीजें हैं वही असली जीत मानी जाती है। हम देख सकते हैं कि अगर आज हम असफल हो गए हैं और हम हार का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है, बल्कि दोस्तों हमें ये याद रखना है कि आज की हार ही कल की जीत की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आप खुद से ये वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे बल्कि फिर से मेहनत करेंगे और दोस्तों आप फिर खुद देखेंगे कि आपकी मेहनत आपको कहां तक ले जाती है। तो दोस्तों, हार अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है सफलता की। गिरना जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है फिर से उठना। अगर दोस्तों आप हार को एक सीख के रूप में बदल देंगे तो यकीन मानिए आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है, कभी खुशी बनकर तो कभी हार बनकर। लेकिन याद रखिए, हार हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आती है दोस्तों। जब जब आप गिरेंगे तब आप खुद से सिर्फ एक बात कहिएगा कि यह अंत नहीं, यह तो मेरी नई शुरुआत है। क्योंकि असली जीत वही है साथियों जो हार के बाद भी मुस्कुराना सिखाए, जो गिरकर भी उठना सिखाए और जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। तो आज से ही दोस्तों अपनी हर हार को एक सीख बनाइए, हर ठोकर को एक कदम बनाइए और हर डर को अपनी ताकत बना लीजिए। यकीन मानिए, आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका हौसला साथियों आपको जरूर अपनी जीत तक ले जाएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अभी ही समाप्त तो होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो, 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। तो भाइयों बनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या इन्हें बल्ले आप हमने राय सुझाव आली शको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती अमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी साथी अंजलि नू। राम राम।